FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टन एज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संबत 1948 की ज्येष्ठ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 जून सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। श्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता के लिए भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत यूके विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत यूके विजन 2035 के विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु तथा स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया है और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों

0: रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में एक वर्ष का सेवा विस्तार देने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में उनका ये कार्यकाल 10 जून से प्रभावी होगा और ये एक और वर्ष की अवधि के लिए रहेगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 7 जून तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिन मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून को 1973 से हुई थी। ये दिन पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाइजिंग को शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हमारे दिल्ली केंद्र से भी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। समय हो चुका है खेती की बातें कार्यक्रम का। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं जून माह के कृषि कार्य पर जानकारी प्राप्त करते हैं प्रतिमा वर्मा से।
2: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आज बातें जून माह के महत्वपूर्ण कृषि कार्य की। जी हाँ किसान भाइयों, कार्यक्रम में सर्वप्रथम धान फसल की बातें। यदि मई के अंतिम सप्ताह में धान की नर्सरी नहीं डाली हो तो जून के प्रथम पखवाड़े तक पूरा कर लें, जबकि सुगंधित प्रजातियों की नर्सरी जून के तीसरे सप्ताह में डालनी चाहिए। धान की महीन किस्मों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 किलोग्राम, मध्यम के लिए 35 किलोग्राम। धान की महीन किस्मों की प्रति हेक्टेयर बीज दर 30 किलोग्राम, मध्यम के लिए 35 किलोग्राम, मोटे धान के लिए 40 किलोग्राम और ऊसर भूमि के लिए 60 किलोग्राम पर्याप्त होता है, जबकि संकर किस्मों के लिए प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि नर्सरी में खैरा रोग दिखाई दे तो 10 वर्ग मीटर क्षेत्र में 20 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब बातें मक्का की। जी हां, मक्का की बुआई 25 जून तक पूरी कर लें। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो बुआई 15 जून तक कर लेनी चाहिए। जी हां किसान भाइयों, सिंचित दशा में अरहर की बुआई जून के प्रथम सप्ताह में अन्यथा सिंचाई के अभाव में वर्षा प्रारंभ होने पर ही करें। उन्नत बीज का प्रयोग खेतों में करें। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज आवश्यक होगा। अरहर का राइजोबियम कल्चर से उपचारित बीज 60x75 और 15x20 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। अब बात उठती है कि रबी फसल की कटाई के बाद भूमि शोधन कैसे करें। जी हां, जायद में बोई गई सूरजमुखी और उर्द की कटाई, मड़ाई का कार्य और मूंग की फलियों की तुड़ाई का कार्य 20 जून तक अवश्य पूरा कर लें। पशु चारे के लिए ज्वार, लोबिया और बहुकटाई वाली चारे की बुआई कर दें। वर्षा ना होने की दशा में पलेवा देकर बुआई की जा सकती है। किसान भाइयों, मानसून वर्षा से पूर्व खेत में अच्छी मेड़बंदी कर दें, जिससे खेत की मिट्टी ना बहे और खेत वर्षा का पानी सोख सके। बिल्कुल किसान भाइयों, अब बातें सब्जियों की। बैंगन, मिर्च, अगेती, फूलगोभी की पौध बोने का समय है। बैंगन, टमाटर और मिर्च की फसलों में सिंचाई के आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करें। भिंडी की फसल की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। परभनी क्रांति, आजाद भिंडी, अर्का अनामिका, वर्षा, उपहार, ये सभी भिंडी की अच्छी किस्में हैं। लौकी, खीरा, चिकनी तोरी, आरा तोरी, क- करेला और टिंडा की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। किसान

0: भाइयों, अब बातें बागवानी की। नए बाग के रोपण हेतु प्रति गड्ढा 30 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 1 किलोग्राम नीम की खली और आधी गड्ढे से निकली मिट्टी मिलाकर भरें। गड्ढे को जमीन से 15x20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरना चाहिए। केला की रोपाई के लिए उपयुक्त समय है। रोपण के लिए 3 माह पुरानी तलवारनुमा स्वस्थ और रोगमुक्त पुत्ती का ही प्रयोग करें। आम में ग्राफ्टिंग का कार्य करें। वानिकी के लिए पुराने पौधों की 1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, पुष्प और सुगंधित पौधों की खेती में रजनीगंधा, देशी गुलाब और गेंदा में खरपतवार निकालें और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें। बेला तथा लिली में आवश्यकता अनुसार सिंचाई, निराई और गुड़ाई करें। माह के अंत में मेंथा की फसल की दूसरी कटाई कर लें। किसान भाइयों, अब संक्षिप्त बातें पशुपालन की और दुग्ध विकास की। पशुओं को धूप लू से बचाएं। स्वच्छ पानी की पर्याप्त व्यवस्था करें। पशुओं को परजीवी की दवा पिलाएं। मुर्गियों को गर्मी से बचाएं। पर्दों पर पानी के छींटे मारें। निरंतर स्वस्थ जल की उपलब्धता बनाए रखें। किसान भाइयों, कृषि में समय से किए गए कार्य का पूरा लाभ हमें भरपूर प्राप्त होता है। विलम्ब से किए गए कृषि कार्य में अधिक लाभ की आशा कम रहती है। इसलिए फसलों की बुआई और अन्य कृषि कार्य समय के अनुसार कर लेना चाहिए। ये हुई बातें जून माह के महत्वपूर्ण कृषि कार्य की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: जून माह के कृषि कार्य पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। खेती की बातें कार्यक्रम के तहत समय हो चुका है तुलसीदास रचित श्री रामचरित मानस गान का।
2: एपिसोड 168 168।

प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रात्रि विश्राम के बाद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण ने प्रातःकाल स्नानादि करके मुनि चरणों में सिर नवाया। फिर सखा निषादराज के साथ प्रस्थान को तैयार होकर उन्होंने मुनिवर से मार्गदर्शन की याचना की। भरद्वाज जी ने मन ही मन हंसकर कहा, आपके लिए तो सभी मार्ग समान रूप से सुगम हैं। उन्होंने अपने चार शिष्यों को बुलाकर मार्ग दिखलाने के लिए साथ जाने का आदेश दिया। राह में मिलने वाले गांवों के नर नारी श्री राम, सीता और लक्ष्मण के रूप दर्शन कर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। यमुना तीर पहुंचकर श्री राम ने आग्रह करके मुनि शिष्यों को वापस विदा किया और आप निषादराज के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। एक स्थान पर छोटी आयु का एक तपस्वी न जाने किस दिशा से आकर श्री राम के चरणों में आ गिरा। अपने आराध्य को पहचानकर उस तेजस्वी का शरीर पुलक से भर गया था। उसकी आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए थे। श्री राम ने उठाकर उसे हृदय से लगा लिया।

मानव जीवन में सुरक्षा की अहमियत समझने के लिए आवश्यक है सृष्टि की संरचना को समझना और उसे स्वीकार भी करना। सवाल जीवन के भविष्य का है। वर्तमान सुरक्षित होगा तो भविष्य खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा। अपने आसपास दृष्टि डालें तो समय के साथ प्रकृति कंक्रीट के जंगल में बदलती जा रही है। हरियाली की दुनिया केवल अब यादों में सिमट कर रह गई है। चिंतन के क्षण में सोचिए, हरियाली नहीं होगी, जल नहीं होगा, जल नहीं होगा, कल नहीं होगा। जब कल ही नहीं होगा तो वर्तमान की बुनियाद की नींव रखें तो हम किस पर रखें? याद रखें, नींव कमजोर होगी तो भविष्य भी हिल जाएगी। सीधे तौर पर बात करें तो पर्यावरण की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। जीवन का आधार है पर्यावरण। दौड़ती जिंदगी हांफ रही है, विलासिता की जिंदगी आज की जरूरत हो गई है, लेकिन प्रकृति की सुरक्षा पर ध्यान देना तो दूर, उसके विषय में सोचना भी आज शायद मानव के पास इतना वक्त नहीं, और शायद अपने वक्त को चुराने में भी वो कोताही करता है, तभी तो ये वक्त उसकी पोटली में कहीं दुबक सा गया है। विज्ञान के बढ़ते कदम में जनजीवन को सरल सहज जरूर बनाया है, लेकिन सुविधा भोगी इंसान अपने तक ही सीमित रहकर प्रकृति से दूर होता गया है। जनसंख्या वृद्धि ने धीरे धीरे हरियाली को निगल लिया। सोचिए, अगर बढ़ती गर्मी से पशु पक्षी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे तो पर्यावरण संतुलन बिगड़ता ही जाएगा। हाथ में आपका मोबाइल हो, आपके हाथ में इंटरनेट हो और इस इंटरनेट की पहुंच सबके पास पहुंचे, इसके लिए हर घर के चार कदम पर यदि हम टावर लगा देते हैं तो सोचने वाली बात है कि धीरे धीरे खुद देख रहे हैं कि पक्षी कम होते चले जा रहे हैं। एसी की ठंडी हवा कमरे में जीवन को कृत्रिम जीवन देकर प्रकृति के सानिध्य से तो दूर कर ही रही है, और मानव इस जीवन में जीकर अपने आप को कृतार्थ भी समझ रहा है। घर, गाड़ी, दफ्तर, सभी जगह अंदर ठंडा है और सड़क धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, और शायद यही है कि सड़क जो गर्म हो रही है अपनी इस कवायद पर रफ्तार भी पकड़ रही है। सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी संरक्षण सम्मेलन आयोजित करके इस विषय पर सबों का ध्यान खींचा गया। संरक्षण की दिशा में पहला कदम जल को बचाना है, क्योंकि जल ना होगा तो फिर बहुत मुश्किल में हम और आप पड़ जाएंगे, क्योंकि आज सच तो ये है कि जल जल रहा है। बिन पानी सब सून। वायु प्रदूषण की बात करें तो आज वायु भी प्रदूषित है। ध्वनि प्रदूषण की बात करें तो आज ध्वनि भी प्रदूषित है। कहने का मतलब है, शोर शराबे की जिंदगी में हम

और आप जी रहे हैं। गाड़ी की बढ़ती हुई रफ्तार धीरे धीरे वायु को प्रदूषित कर रही है। कल कारखाने से निकलता धुआं धीरे धीरे मानव को ही निगलता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा विचारणीय है। संकल्प करें, मानव जीवन सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण सुरक्षित करना जरूरी है और इस दिशा में कदम उठाने के लिए हर मानव को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि सिर्फ हमें दिवस मनाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। दिवस के साथ साथ हम प्रतिदिन अपने आसपास हरियाली की एक पौध लगा दें, क्योंकि पेड़ लगाएंगे तो वर्षा जल को संरक्षित कर सकेंगे। वर्षा जल संरक्षित हो सकेगा तो हरियाली खुद ब खुद आएगी। आज लगातार बीमारी के चपेट में हर इंसान है, कारण और यही प्रदूषण धीरे धीरे मानव जीवन के उम्र को भी कम करता जा रहा है। सभी को जानते हुए भी हम और आप कहीं सिर्फ अपनी विलासिता की जिंदगी में समय के साथ चल रहे हैं, लेकिन समय हमारे साथ नहीं, हमसे दो कदम पीछे हो गया है। आइए हम और आप मिलकर संकल्प करें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे ताकि मानव जीवन को सुरक्षित कर सकें।

0: अभी आप सुन रहे थे आरंदा कार्यक्रम और अब समय हो चुका है गांधी कथा का। आइए सुनते हैं गांधी कथा। संकलन एवं वाचन स्वर है अनुराधा सिंह का।
1: का ये डाल्टनगंज केंद्र है, प्रस्तुत है गांधी कथा।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कूटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहां तहां जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा

ना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मीलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़। डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है, और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे, पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां। आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियां हर एक गांव में आसानी से मिल सकती हैं, सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियां शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गांवों के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गांव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों के विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से नष्ट हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है स्वास्थ्य चर्चा का, अकेलेपन से बचें। इस विषय पर आइए सुनते हैं भेंट वार्ता संजय कुमार मुंडा से।
1: आजकल देखा जा रहा है कि लोग अकेलापन का शिकार हो रहे हैं, लोग अकेला रहना चाहते हैं। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम अकेले क्यों रहना चाहते हैं? क्यों लोगों से मिलना जुलना हम पसंद नहीं करते हैं? यदि हम लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, दोस्त बनाएंगे, परिवार के साथ अच्छे समय बिताएंगे तो हम खुश रह सकते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि आप अकेले क्यों हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान के सहप्राध्यापक डॉक्टर संजय कुमार मुंडा जी। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: डॉक्टर साहब, आजकल अकेलापन लोगों को क्यों घेर रहा है, क्या कारण मानते हैं आप?
2: अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकता है। लेकिन आप अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हम में से हर कोई जिंदगी में कभी ना कभी अकेलापन चाहता है। खासकर जब हमारा जीवन काफ़ी उलझ गया होता है तो हर इंसान चाहता है कि थोड़ा समय एकांत में बैठ करके, थोड़ा आत्मचिंतन करके कुछ अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता है, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। तो ये अकेलापन एक सकारात्मक पहलू है जहां व्यक्ति आत्मचिंतन की तरफ जाता है। अकेलापन अब एक आदत के तौर पे लोगों में आता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है ये समझने की ज़रूरत है। पहला कारण संवादहीनता। लोग अब एक दूसरे के साथ उस प्रकार से संवाद नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं। संवाद करने के जगह पे लोगों के हाथों में अब बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं, चाहे मोबाइल आ गया है, चाहे लैपटॉप आ गया, चाहे OTT आ गया। लोग अपने आप को एंटरटेन करना अपने तरीके से एकांत में सीख रहे हैं, बजाय इसके कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते एक दूसरे के साथ संवाद स्थापित करके जिए, लोग अकेलापन का चाह ज़्यादा रख रहे हैं। तो एक तो ये है। तीसरा कैटेगरी इस तरह का हो रहा है कि लोग

0: जो परेशान है, जो ज़्यादा तनाव में है, वो अब क्या हो रहा है, उनके अंदर एक किस्म का हीन भावना भी आ रही है और लोगों में आत्मविश्वास की कमी आ रही है। तो ऐसे लोग भी हैं जो एकांत को जो है वो मजबूरी में ले रहे हैं, तो उनकी मानसिक अवस्था इस प्रकार से हो जाती है कि वो एकांत में रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो एक तबका इस तरह के भी लोगों का होता है। ज़्यादातर आज के युग में जिस तरह का जीवन शैली हम लोगों का बन गया है, उसमें अकेलेपन के लिए बहुत सारे अवसर बने हुए हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर उन्हीं अवसरों पर रह लेते हैं। संवाद स्थापित करने का अवसर, सामाजिक होने का अवसर कम से कम होता जा रहा है, तो लोग उसकी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो लेकिन इन अवसरों को पैदा करने की ज़रूरत है, इन अवसरों को बनाने की ज़रूरत है अपने जीवन में, जो कि लोग शायद नहीं कर रहे हैं।
1: कोई व्यक्ति किसी से संवाद स्थापित भी करता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कटाक्ष होता है।
0: हाँ, दो बातें हो रही हैं। एक तो संवादहीनता है कि लोग एक दूसरे से संवाद ही नहीं करें, एक घर में ही पूरा परिवार, कई बार ऐसा होता है पूरे दिन में शायद मुश्किल से कुछ पल के लिए ही एक दूसरे से बात किया हो, जबकि वो लोग सुबह से शाम तक एक साथ एक घर में हैं। तो आप समझ सकते हैं ऐसी स्थितियां भी हैं। दूसरा है संवाद की कमी तो है, दूसरा है अगर संवाद हो भी रहा है तो वो बहुत ही त्रुटिपूर्वक हो रहा है, उसमें बहुत सारे मतलब कटाक्ष, जैसे आपने कहा जब भी संवाद हो रहा है तो लोग एक दूसरे की कमियां को बता रहे हैं, जब भी संवाद हो रहा है लोग एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, जब भी संवाद हो रहा है तो लोग एक दूसरे से उलझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति जब आने लगती है तो लोगों को लगता है इससे अच्छा तो है कि हम बात ही ना करें, तो वो स्थिति भी आती है कि लोग बात करने से कतराते हैं, बात करने का अवसर बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो एक संवादहीनता और साथ में ऐसी स्थिति का आ जाना जहाँ की एक हेल्दी डायलॉग्स आपस में लोग नहीं स्थापित कर सकते हैं, सबके साथ होते हुए भी व्यक्ति अकेला ही होता है,
1: इसका दुष्प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है।
0: शारीरिक स्थिति ये होती है कि ज़्यादातर लोग अकेलेपन में या तो बैठे हुए अवस्था में रहेंगे या लेटे हुए अवस्था में रहेंगे। अगर हम बोले फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो अधिकतर फिजिकल एक्टिविटी जो होता है वो सामाजिक दायरे पे ही होते हैं, चाहे हमें किसी के घर जाना है या कोई हमारे घर आ रहा तो उनके लिए तैयारी करना है, ये एक सामाजिक दायरे में हम कुछ गतिविधियों में लिप्त होते हैं। लेकिन अकेलेपन में कोई भी किस्म का फिजिकल एक्टिविटी की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो शारीरिक तौर पे व्यक्ति जो है एक तरह से पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक्शन रहित हो जाता है, वो कोई काम नहीं करता, निष्क्रिय हो जाता है। दूसरा चीज होता है कि जब व्यक्ति अकेलेपन में रहता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्षमता जो है संवाद स्थापित करने की क्षमता जो होती है, एक जो हम सोशल स्किल बोलते हैं, आपके अंदर वो स्किल, वो क्षमता जिससे कि आप लोगों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, आप उनकी भावनाओं को समझते हैं, आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, ये सारी चीज़ें प्रभावित होने लगती हैं। तो लोगों के अंदर में एक कमी सी आने लगती है, लोग दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि सामाजिक स्तर पर जब हम जितना अधिक इस तरह का व्यवहार करेंगे हम उतने और एक तरह से मजबूत होते जाते हैं इन क्षेत्रों में। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं होती है, सामाजिक तौर पे ये गतिविधियां नहीं हो रही है, तो एक इस पे भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ सोचने समझने वाली बात भी, एक बौद्धिक स्तर पे जो हमारा विकास होता है, हम दूसरों के विचारों को आत्मसात करते हैं, अपने विचारों को दूसरों को शेयर करते हैं, इन सब चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है। कई बार दूसरों का जो एक मत होता है उसको ग्रहण करने में आप बहुत कठिनाई होती है। जब लोग सामाजिक होते हैं तो लोग दूसरों को मत से अगर वो सहमत नहीं भी है तब भी वो आगे बढ़ना जानते हैं, लेकिन जब संवादहीनता वाली बात होती है तो ऐसा होता है कि मेरे मत से कोई दूसरा व्यक्ति उसको सहमति नहीं दे रहा है तो वहाँ पर एक टकराव की स्थिति आ जाती है। तो ज़्यादातर अकेलापन एक टकराव वाली स्थिति भी पैदा करता है जब भी इससे लोग बाहर आने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ साथ एक तबका ऐसा भी होता है जो धीरे धीरे अकेला रहते रहते रहते वो एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है

0: जहाँ उसका जीवन पूरी तरह से समाज के बिना एक जीवन की आप कल्पना किस तरह से कर सकते हैं, तो वो समाज से जब वो कट जाता है तो एक बहुत ही खराब स्थिति पैदा हो जाती है।
1: कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में वो घुले मिले, लोगों को सहयोग करे, तो कैसे इन सब चीज़ों से हम बाहर निकले।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। आइए समाचारों के लिए जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव यवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली

में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोनताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों के बाद स्वागत है आपका। पेश है कार्यक्रम विवरण। अब से बस कुछ ही पलों के बाद आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। कलाकार होंगे झिरगा भगत और उनके साथ ही स्वर सुरता कार्यक्रम का समय होगा 7:45। आज के कलाकार हैं हरिहरन। सुबह के 8:00 दिल्ली केंद्र से हम जुड़ेंगे समाचारों के लिए। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। 8:45 पर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। सुबह के 9:00 आप सुनेंगे जोहार पलामू। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता अनुराधा सिंह से, तपती धरती सुलगता वक्त अब नहीं संभाले तो कब। सुबह के 9:30 प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। सुबह के 10:00 दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार, 10:05 पर हिंदी में समाचार और 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

दिन के 1 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 1:10 पर रांची केंद्र से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले होंगे। दिन के 2 बजे दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी में समाचार, 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। 2:30 पुनः मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे। 2:55 पर रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 4 बजे रांची केंद्र से पुनः आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, 4:02 पर विविध भारती के कार्यक्रम और शाम 5 बजे पुनः रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होगी।

5:35 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे पुनः कार्यक्रम विवरण। 5:35 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर आंगन। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा होगी और महिलाएं आत्मनिर्भर बने, साथ ही सुधांशु तिवारी की वार्ता होगी पर्यावरण संरक्षण सबके लिए जरूरी। रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार शाम 6:00, 6:02 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे, 6:30 पर ग्रामीण सभा कार्यक्रम होगा, शाम 7:00 रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे, 7:10 पर जिले में आजकल, 7:15 पर विधानसभा समीक्षा, 7:20 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा एक रंग, 7:45 पर आप सुनेंगे उड़ान कार्यक्रम, रोजगार से जुड़ी कुछ बातें होंगी, संकलन और वाचन स्वर होगा मीनाक्षी कर्ण का, रात्रि 8:00 फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा चित्रपट से, 8:45 पर दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, 9:15 पर उर्दू में समाचार, 9:30 मुंबई केंद्र से

विविध भारती के कार्यक्रम जारी होंगे और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले होंगे, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और हमारी सभा की समाप्ति होगी रात्रि के 11:10 पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। समय हो चुका है लोकगीतों के कार्यक्रम पलाश का। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं झिरगा भगत और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश। समय हो चुका है सुगम संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं स्वर सृजता कार्यक्रम के तहत हरिहरन को।

अभी आप सुन रहे थे स्वर सरिता कार्यक्रम के तहत हरिहरन को। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम आपको दिल्ली के अंदर लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। 8:30 बजे रांची के अंदर से प्रादेशिक समाचार रिले होंगे। समाचारों के बाद 8:45 पर हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आइए हम आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन के दौरे पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को विश्वसनीय साझेदार बताया, कहा अमेरिका का दबाव भारत रूस संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जन कल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 2400 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गुजरात में ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार, दहेज पीसीपीआईआर और सरिगाम जीआईडीसी में उन्नत अपशिष्ट निपटान प्रणाली और वलसाड में आधुनिक बिजली वितरण उन्नयन सहित कई महत्वपूर्ण औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी आज शुभारंभ किया जाएगा। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
4: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये चैंपियनशिप आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विश्व स्तर पर योग के संदेश को पहुंचाने का अवसर है।
4: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस शेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया।

0: यह है एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमरीका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमरीका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघचालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन। पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा।

0: सोसाइटी संकेत दे रही है। क्या हम सुन रहे हैं? पहले मौसम बदलता था, अब बिगड़ता है। प्रकृति से सिर्फ लिया, कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस: Prime Minister Narendra Modi to visit Gujarat and Daman today to launch multiple development projects worth around 21,800 crore rupees. Prime Minister calls upon athletes participating in World Yogasan Championship to become ambassadors of Ayush Ministry's Yog 365 campaign. Reserve Bank of India to announce its bi-monthly monetary policy today. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Kashyap passes away in New Delhi. Russian President Vladimir Putin says US pressure will not affect India-Russia ties, describes India as a reliable partner, and India to take on arch-rivals Pakistan in semi-final of Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament in Japan today. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat in Gujarat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in road, power and industrial sectors. Mr. Modi will first visit Hazira and will review the ongoing industrial and infrastructure projects before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stones for various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. A report from our correspondent.
3: In a major boost to regional infrastructure, Prime Minister Narendra Modi will dedicate key packages of 8-lane Vadodara-Mumbai Expressway to the nation today, significantly enhancing connectivity between Gujarat and Maharashtra. The Prime Minister will also lay the foundation stone for the four-laning of critical sections of National Highway 56 to improve access to tribal regions and Statue of Unity. Catering to public welfare, the Prime Minister will also inaugurate a modern 200-bedded ESIC hospital in Surat, equipped with round-the-clock emergency and trauma care. In addition to this, several critical utility and industrial infrastructure projects will also be launched today, including the transmission network expansion in Gujarat, advanced effluent disposal system at Dahej and Sarigam GIDC, modern power distribution upgrades in Valsad. Aparna Khund, Akashwani News, Ahmedabad.
2: Prime Minister Modi has called upon athletes participating in World Yogasan Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yog 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said the Ministry of Ayush has launched the Yog 365 campaign to encourage year-round engagement with yog and promote healthier lifestyles across communities.
4: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide.
4: योगासन स्पोर्ट्स का एक और पक्ष है। हम जानते हैं कि हर बड़ा स्पोर्ट अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लेकर आता है।

ये रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। इसलिए जैसे जैसे योगासना स्पोर्ट्स का विस्तार होगा, वैसे वैसे इससे जुड़ी नई संभावनाएं भी बढ़ेगी। ये खिलाड़ियों के लिए नई कैरियर

0: describes India as a reliable partner, and India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey tournament in Japan today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है प्रादेशिक समाचार का।
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित। भाजपा की पहली सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए निर्देश। विकास कार्यों में तेजी लाने पर दिया जोर। विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक। झारखंड में 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना। और धनबाद में आज से झारखंड राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज। प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का होगा चयन। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा को कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। हालांकि इस सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं, बजटीय प्रावधानों और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नवाचार आधारित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। विभाग के सचिव ने बताया कि इनोवेटिव स्कीमों की राशि 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत चयन के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट से भोजपुरी, मगही और मैथिली को हटाए जाने के मुद्दे पर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मंत्रियों के बीच समन्वय की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार की आलोचना की है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि सरकार इस मामले में एकमत नहीं दिख रही है।
3: तो यहाँ पर सरकार में एक मंत्री कुछ कह रहा, दूसरा मंत्री कुछ और कह रहा है। भाषा का विवाद झारखंड में खड़ा हो रखा है या विवाद जानबूझकर के मूल जो मुद्दे है उसको भटकाने के लिए तैयार किया गया। आप किसी भी स्टेट में लैंग्वेज पॉलिटिक्स देखते, कोई फैसला लिया गया है तो उसके पहले प्रॉपर एक्सपर्ट्स की कमेटी बनी है जिसमें प्रोफेसर होते हैं, लैंग्वेज के जानकार होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद उस कमेटी के फैसले के दम पर कोई भी फैसला लिया जाता है।
2: वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने इस विवाद के जल्द सुलझने की उम्मीद जताई है। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र मुख्यमंत्री को सौंपेगी और उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
4: कमिटी के प्रतिवेदन के बाद सरकार उस पर निर्णय लेगी, तो हमें लगता है कि अभी प्रक्रिया चल रही है, तो प्रक्रिया अभी जब तक खत्म ना हो तब तक भारतीय जनता पार्टी विधवा विलाप करना छोड़ दे। जांच के पहले किसी को अपराधी घोषित कर देना, प्रक्रिया चल रही हो उस पर बयान दे देना और फिर बाद में बैकफुट पे आ जाना, तो ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है।
2: विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए रांची में 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जहां बीएलओ सुबह 8 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने बीएलओ और सुपरवाइजरों को गंभीरता से कैंप चलाने, शत प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने और लापरवाही बरतने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने बूथ पर जाकर मैपिंग जरूर कराएं। भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत ईसीआई नेट के उपयोग को लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारियों ने विशेष गहन पुनरीक्षण के विभिन्न चरणों में ईसीआई नेट के प्रभावी उपयोग और डेटा प्रबंधन

0: संशोधन की जानकारी प्राप्त की। आयोग के विशेषज्ञों ने प्रक्रिया और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत मार्गदर्शन किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय की योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर झारखंड के विभिन्न जिलों में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर वन प्रमंडल और एलिफेंट प्रोजेक्ट द्वारा संयुक्त रूप से दो मुहानी क्षेत्र में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। दिल्ली में हाल ही में हुई अग्निकांड की घटना के बाद बोकारो जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि जिले के सभी होटल, गेस्ट हाउस और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
2: पहला तो ये है कि उनका परमिशन चेक किया जाएगा, दूसरा ये देखा जाएगा कि वहाँ फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है, किस तरह की व्यवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीढ़ियों के पास बहुत सारी ऐसी चीजें रख दी गई हैं जिससे जाम हो गया है। इमरजेंसी एग्जिट पे ही बहुत सारे लोग बहुत कुछ सारी सामान रख देते हैं। मैंने इसका स्वयं देखा, महसूस किया है कि जो इमरजेंसी फायर एग्जिट है वहीं पर सामान रखे हुए हैं। फायर सेफ्टी के जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी इस जाँच टीम में रहेंगे।
0: जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ललित मीणा ने बताया कि इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं।
3: इन लोगों को पकड़ा गया, इसमें दो लोग हैं, जो एक है जाहिद हुसैन उर्फ विक्की, जुगसलाई का रहने वाला है, और एक मोहम्मद रेहान हुसैन है, जुगसलाई क्षेत्र का। तो ये दोनों लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए। इनके पास से लोहे का एक पिस्टल, 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस, दो मोबाइल सेट इनके द्वारा इनके माध्यम से प्राप्त किए गए।
0: और अब मौसम। केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने के बाद अब झारखंड में इसके आगमन का इंतजार है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 17 से 20 जून के बीच संताल परगना क्षेत्र के रास्ते मॉनसून के प्रवेश की संभावना है। धनबाद के डॉक्टर जेके सिन्हा मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में झारखंड राज्य सीनियर महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन आज शाम 5 बजे होगा। झारखंड राज्य कबड्डी संघ और धनबाद जिला कबड्डी संघ द्वारा एसपी क्लब के सहयोग से आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य की 36 महिला पुरुष टीमें और 30 तकनीकी अधिकारी भाग लेंगे। प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक में होने वाली राष्ट्रीय सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का चयन किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड की खबर को प्रमुखता से लिया है। प्रभात खबर ने इस पर लिखा है, मशीन से निकला धुआं और आईसीयू में लगी आग, 5 लोगों की मौत। दैनिक भास्कर के लीड है, दिल्ली के होटल अग्निकांड में बोकारो की सुरभि की मौत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, प्रत्येक जिले में एक आईटीआई बनेगा मॉडल। हिंदुस्तान लिखता है, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित। भाजपा की पहली सूची में झारखंड से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के दिए निर्देश, विकास कार्यों में तेजी लाने पर दिया जोर। विशेष गहन पुनरीक्षण

के तहत अनमैप्ड मतदाताओं की मैपिंग के लिए 6 और 7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक, झारखंड में 17 से 20 जून के बीच मॉनसून के पहुंचने की संभावना। और धनबाद में आज से झारखंड राज्य सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आगाज, प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का होगा चयन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो यह रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

फकीरा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अर्पण से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इस गीत के साथ ही आज के गीत गुंजन कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम है जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

जोहार पलामू कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ मैं आपकी दोस्त शर्मिला। आप सभी को हमारा नमस्कार और जोहार। साथ ही आज है पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस की भी आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हमारी पृथ्वी संभवतः ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है दोस्तों। यहाँ प्रकृति का अथाह सौंदर्य भी है, विविधताओं से भरा जीवन भी, जीवन के पैदा और विकसित होने की सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियाँ भी हैं। हम और हमारा विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, पृथ्वी जैसे एक ग्रह की रचना नहीं कर सकता। पर्वतों जैसे विशालता, समुद्र सी गंभीरता, झरनों जैसी चंचलता और नदियों सी शीतलता कोई कहाँ से लाएगा। बारिश सा कोई भी तिलस्म आप गढ़ सकेंगे? आप पेड़ से सुंदर एक कविता नहीं लिख सकते। पत्तों के बदन पर हवा की सरसराहट जैसा कोई संगीत रचना हमारे बूते की बात नहीं। आप एक फूल से बेहतर प्रेम पत्र की कल्पना नहीं कर सकते। फूलों पर गिरी ओस की बूंदों जैसी करुणा और कहाँ दिखेगी आपको। दुनिया भर की बिजली मिलकर एक पूनम का चांद नहीं रच सकती। आकाश में उड़ने वाले हजारों विमान मिलकर एक पक्षी के नन्हे पंखों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस दुनिया की कोई भी मशीन शीतलता का वह एहसास नहीं दे सकती जो बदन पर गिरी हुई बारिश की चंद बूंदें छोड़ जाती हैं। हमारी लाख कोशिशें किसी के दिल में वह गुदगुदी पैदा नहीं कर सकती जो हमारे बालों और बदन को सहलाकर हवा का एक झोंका पल में कर जाता है। हमारे सारे धर्म मिलकर क्या एक बच्चे की मासूमियत को जन्म दे पाएंगे? प्रकृति के रूप में ईश्वर ने स्वयं को अभिव्यक्त किया है। प्रकृति और उसके पर्यावरण का सम्मान करें। वे बचेंगे तो हम बचेंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी बचेंगी। तमाम दोस्तों को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और अब बात करें आज के सुविचार की। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी बन जाती हैं। यह विचार हैं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के। मौसम की बात करें, मौसम अपडेट है आज का। मैक्सिमम तापमान 38 डिग्री और मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस। कल यानी कि 6 जून को अधिकतम 38 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कहीं कहीं पर बादल दिखाई देंगे, छिटपुट बारिश भी हो सकती है झारखंड के कुछ इलाकों में, और गर्मी यूं ही बरकरार रहेगी, उमस भरी दोपहरी होगी। और मौसम की इस जानकारी के बाद आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: श्रोताओं, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जो हर पलामू कार्यक्रम में विश्व पर्यावरण दिवस पर। आइए आज सुनते हैं अनुराधा सिंह की वार्ता, तपती धरती शुलकता वक्त, अब नहीं संभाले तो कब।
4: आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सुबह जब आपकी आंखें खुली और आपने घर की खिड़की या दरवाजा खोला, तो क्या आपको ताजी और ठंडी हवा का झोंका मिला? शायद नहीं। सुबह के 7 बजते ही धूप बदन को जलाने लगती है, पंखे और एसी भी जवाब देने लगे हैं। पूरा देश और हमारा झारखंड इस समय भीषण हीट वेव के रेड अलर्ट पर है। सुबह सुबह जब एक माँ अपने बच्चे को स्कूल में जाने के लिए तैयार करती है, तो वह बच्चे की पीठ पर किताबों का बस्ता टांगने के साथ साथ उसके चेहरे को सूती कपड़े से ढकती है, ग्लूकोज का पानी देती है और चलते चलते 10 बार टोकती है, देखो बेटा धूप में मत निकलना, बस से उतरकर

सीधे छांव में आना। जरा सोचिए, सुबह सुबह प्रायः हर घर की यही कहानी है। सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं, होता कि गर्म हवाएं झुलसाने लगती हैं। दोपहर होते होते सड़कें भट्टी बन जाती हैं और पारा 45 से 48 डिग्री को चूमने लगता है। हर तरफ हाई अलर्ट है। लेकिन क्या हमने कभी ठंडे दिमाग से सोचा कि हमारी इस हरी भरी धरती को आखिर किसका श्राप लग गया है? हर वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन आज यह सिर्फ एक तारीख नहीं, हमारे अस्तित्व को बचाने का आखिरी अलार्म है। धूप इतनी है कि अब साये भी जलने लगे हैं, परिंदे ढूंढते हैं छांव और इंसान कमरों में सिमटने लगे हैं। जी हाँ श्रोताओं, आज हमारी धरती की हकीकत यही बन चुकी है। पूरा देश इस वक्त भीषण गर्मी के हाई अलर्ट पर है। पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है और अस्पतालों में मरीजों की कतारें हैं। हर तरफ एक ही हाहाकार है, अरे बाप रे, इतनी भयंकर गर्मी तो पहले कभी नहीं देखी। लेकिन क्या हमने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि इस हाई अलर्ट की नौबत क्यों आई? क्या यह सिर्फ मौसम का एक चक्र है, या फिर यह हमारी धरती माँ का वो बढ़ा हुआ तापमान है जो बुखार में तपती किसी माँ की तरह हमें चेतावनी दे रहा है? 5 जून सिर्फ एक तारीख या औपचारिकता नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की रक्षा का आखिरी अलार्म है। श्रोताओं, आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े बड़े शब्दों से डर रही है, तब हमें याद करना होगा कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया था। प्राचीन भारत में पर्यावरण की रक्षा हमारी संस्कृति और धर्म का हिस्सा थी। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक लिखा हुआ है कि वृक्षों में जीवन होता है। श्रोताओं, ऋग्वेद का वो श्लोक याद करिए जिसमें लिखा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र यानी संतान है। जरा सोचिए, क्या कोई बेटा अपनी माँ को इस तरह से तपने के लिए छोड़ सकता है? हमारी संस्कृति में तुलसी, पीपल, बरगद और नीम की पूजा यूं ही नहीं की जाती। इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक कारण और पर्यावरण को बचाने का संदेश था। इतिहास गवाह है सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यह राजकीय आदेश जारी कर दिया था कि सड़कों के किनारे छायादार पेड़ लगाएं और कुएं खुदवाए जाएं और वन्य जीवों का शिकार न किया जाए। ये दुनिया का पहला पर्यावरण संरक्षण कानून था जो भारत की धरती पर लिखा गया था। श्रोताओं, जब भी पर्यावरण के लिए आत्मोत्सर्ग और आंदोलन की बात आती है तो हमारा सिर राजस्थान की वीर भूमि और अमृता देवी बिश्नोई के आगे झुक जाता है। साल 1730 में जब राजा के सैनिक खेजड़ी के हरे भरे पेड़ों को काटने आए तो अमृता देवी और उनकी 3 बेटियों समेत बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। उन्होंने कटते कटते कहा था, सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी अगर हमारा सिर कटने के बाद भी एक पेड़ बच जाता है तो यह सौदा बहुत सस्ता है। इसी महान बलिदान से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और श्रोताओं, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो झारखंड की रत्नगर्भा माटी को हम कैसे भूल सकते हैं? झारखंड तो नाम से ही झाड़ यानी जंगलों और खंड यानी प्रदेश का प्रतीक है।
हमारी इस पावन माटी के लाल हैं पद्मश्री सिमोन उरांव, जिन्होंने अकेले दम पर जंगलों को उजड़ने से बचाया, हजारों पेड़ लगाए और जल संरक्षण के लिए ऐसे बांध और तालाब बनाए कि आज वह इलाका भी

और अपनी महिला साथियों के साथ मिलकर मुतुर खाम के घने जंगलों को कटने से बचा लिया। इन महानायकों ने हमें सिखाया कि पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी कमेटियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक मजबूत इरादा ही काफी होता है। लेकिन श्रोताओं, आज उसी झारखंड और हमारे देश की स्थिति क्या है जो राज्य कभी अपनी ठंडी हवाओं, झरनों और घने जंगलों के लिए जाना जाता था, आज वहाँ के शहर चाहे रांची हो, धनबाद हो, जमशेदपुर हो, बोकारो हो या फिर हमारा पलामू हो, भीषण हीटवेव की चपेट में है। अंधाधुंध खनन, कंक्रीट के जंगलों का निर्माण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण हमारे जंगलों का दायरा लगातार सिमट रहा है। हमारी जीवनदायिनी नदियाँ जैसे स्वर्णरेखा, दामोदर और देश की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और सूख रही हैं। जल स्तर पाताल में जा रहा है। हमने एसी और गाड़ियों की विलासिता में अपने कमरों को तो ठंडा कर लिया, लेकिन जो गैसें हम बाहर छोड़ रहे हैं उसने पूरे वायुमंडल को एक उबलता हुआ प्रेशर कुकर बना दिया है। अगर आज हम झारखंड और देश के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपनी इस प्राकृतिक विरासत को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम सिर्फ सूखी नदियां और बंजर पहाड़ देकर जाएंगे। प्यारे श्रोताओं, सरकार नीतियां बना सकती हैं, मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी कर सकता है, लेकिन धरती का तापमान तब तक कम नहीं होगा जब तक देश का हर नागरिक इस मुहिम से नहीं जुड़ेगा। भारत सरकार ने दुनिया को एक मंत्र दिया है, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली। आइए पर्यावरण दिवस पर हम सब मिलजुल कर कुछ छोटे छोटे लेकिन व्यावहारिक वादे करें। अपने या अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं और संकल्प लें कि जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता हम उसे पानी देंगे और पालेंगे। अब सिर्फ पेड़ लगाना काफ़ी नहीं, पेड़ बचाना जरूरी है। इस भीषण गर्मी में अपने घरों की छतों और बालकनी या जगह के अनुसार मिट्टी के बर्तनों में पानी जरूर रखें। बेजुबान पक्षी प्यास से दम तोड़ रहे हैं। जल संचयन के लिए आने वाले मानसून में बारिश की एक एक बूंद को जमीन के भीतर उतारने का प्रयास करें ताकि हमारी धरती की प्यास बुझ सके। प्लास्टिक को कहें ना, बाजार जाते समय कपड़े का थैला साथ ले जाने की आदत फिर से डालें और जरूरत के अनुसार वाहनों का प्रयोग करें। श्रोताओं, समय तेजी से रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। ये जो 48 और 50 डिग्री की गर्मी आज हम झेल रहे हैं, यह आने वाली पीढ़ी के लिए एक भयानक भविष्य का ट्रेलर है। अगर आज हम नहीं संभले तो कल बहुत देर हो जाएगी। और चलते चलते कवि की ये पंक्तियाँ आपके जेहन में छोड़ जा रही हूँ। प्रकृति जो देती है हमें उसे सहेजना हमारा काम है, हरी भरी रहे यह वसुंधरा, इसी में हमारा आत्मसम्मान है। श्रोताओं, सजग बनिए, सुरक्षित रहिए, धूप से अपना बचाव कीजिए और अपनी धरती माँ का भी ख्याल रखिए। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

0: अनुराधा सिंह जी की वार्ता के जरिए आपने जाना कि कैसे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और इसका कुप्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज है विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आइए हम सब मिलकर प्रकृति की रक्षा का संकल्प लें, एक पेड़ लगाएं, जल की बचत करें, प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर करें, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। आज का छोटा प्रयास कल का सुरक्षित भविष्य। पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, जीवन बचाएं। सेव एनवायरनमेंट, सेव अर्थ, सेव फ्यूचर। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जोहार पलामू कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार, जोहार।
1: जोहार पलामू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार पलामू, प्रस्तुति स्वर शर्मिला वर्मा का, संयोजन श्री एस के लाल का। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। समय हो चुका है प्रायोजित कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, कड़ी संख्या 13।

0: जाए सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
1: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
1: और डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
1: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेती हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
1: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
1: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
1: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
1: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओं, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
1: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
2: क्या बात है!
1: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
2: क्या बात है! श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गाँव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गाँव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
1: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता
2: जी।
1: है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
2: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भोटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए वे पास के काजा जैसे कस्बों में जाते हैं। काजा घाटी के नीचे समतल मैदान में है। बच्चे पढ़ाई के अलावा पानी लाना, भेड़ों और याक की देखभाल करना जैसे भी काम करते हैं।
1: एक और बेहद रोचक जानकारी आपको दे दें, और वो ये है कि स्पीति घाटी में एक गांव है जिसका नाम है हिक्किम। यहाँ स्थित

0: डाकघर दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघरों में गिना जाता
1: जी।
0: है। यहाँ आज भी लोग पोस्टकार्ड और अंतर्देशीय पत्रों का इस्तेमाल करते हैं
1: जी।
0: इस डाकघर की स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी।
1: सन 2022 में इस डाकघर को फिर से बनाया गया और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इसे एक विशाल पत्र पेटी या लेटर बॉक्स का रूप दे दिया गया। श्रोताओं, सर्दियों में डाक पहुंचाना कठिन हो जाता है, यहाँ के डाक कर्मियों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए। वो कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
0: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
0: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है।
2: नकली हीरे।

0: काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। वे दिन रात अपने बेटे के लिए चिंतित रहते थे। वे इसी चिंता में घुले जा रहे थे कि उनके बाद बेटे का क्या होगा।
1: मैं अधिक दिन जीवित नहीं रहूंगा, मुझे अपने पुत्र के लिए कोई सलाहकार ढूंढना चाहिए जो मेरे बाद उसे सही रास्ता दिखा सके।
0: सो एक सुबह उसने सब दरबारियों को दरबार में बुलवाया।
2: शांत शांत,
1: आप सबका स्वागत है। मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है।
3: हाँ हाँ महाराज बताइए,
1: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर
3: हैं। हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज।
1: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा।
4: जी महाराज, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका?
1: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूँ? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है।
5: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है।
0: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया।
1: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है।
0: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया।
6: जी महाराज, बहुत कृपा।
7: महाराज की जय हो।
8: महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो।
1: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद।
0: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा।
1: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे। क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
3: महाराज, ऐसी बात नहीं है,

0: परंतु महाराज, दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है।
1: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं।
0: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़कर थे।
1: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। ये लो आपका इनाम, हीरा।
0: धन्यवाद महाराज। अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए। उनके बीच कुछ चिंता का विषय था। वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे।
2: भाई, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा
3: हुआ? मेरे साथ मिला, मुझे भी कैसे हो सकता है
2: यार? क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली? तुम
3: कैसे हो सकता
2: है? आया था
3: राजा, नकली हीरा दे सकता है?
2: नकली कैसे आ गया? अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया, सभी ने बोला कि नकली है।
1: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
0: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज, यदि आप आज्ञा दें तो हम पूछ लें। महाराज
1: कहिए, मेरी आज्ञा है, आप सभी निसंकोच कहिए।
0: जी धन्यवाद महाराज, धन्यवाद महाराज। महाराज हमने इन हीरों की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली है महाराज।
1: क्या? और कोई शंका?
0: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है, बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
1: ठहरिए, मैं समझाता हूँ। आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए, पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
4: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
1: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
7: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चल।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं। तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: चौथे दिन कानुम पोंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं, लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में ये तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके साथ ही यह कार्यक्रम अभी यहीं समाप्त होता है। कुछ ही पलों में हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के बाद 10:10 पर मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। आइए समाचारों के लिए जुड़ते हैं दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री का दमन दौरा भी होगा। प्रधानमंत्री वहां लगभग 2,970 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक अब से कुछ देर में द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में ये घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। अप्रैल में रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के लिए पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को विश्वसनीय साझेदार मानता है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से पर्यावरण संरक्षण, सतत जीवन शैली और जैव विविधता की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने का आग्रह किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि भारत की सभ्यता ने अपने नागरिकों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक संस्कृति का उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि देश की संस्कृति और परंपराओं का अभिन्न अंग भी है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today. He will dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat across the road, power and industrial sectors. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialties. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. Prime Minister Narendra Modi has called upon athletes participating in World Yogasana Championship to become global ambassadors of the Ayush Ministry's Yoga 365 campaign when they return to their home countries. Speaking at the opening ceremony of the championship in Ahmedabad, Mr. Modi said, Ministry of Ayush has launched Yoga 365 campaign to encourage year-round engagement with yoga and promote healthier lifestyles across communities.
1: भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने योगा 365 अभियान शुरू किया है। मैं इस वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह करूंगा, जब आप अपने अपने देशों में लौटे तो योग के इस संदेश को भी अपने साथ लेकर जाएं। आप सभी अपने अपने देशों में योगा 365 के एम्बेसडर्स बन सकते हैं। आपका अनुभव और योग के प्रति आपका विश्वास पूरे विश्व को इस संदेश से जोड़ सकता है।
2: The Prime Minister said the championship represented more than a sporting competition and offered an opportunity to spread the broader message of yoga worldwide. World Environment Day is being celebrated across the globe today. It has been observed on the 5th of June every year since 1973 as part of the United Nations Environment Programme to build awareness to save life on Earth. The day is observed to raise global awareness to take positive environmental action to protect natural and the planet Earth. On the occasion of World Environment Day, Union Minister for Environment, Forests and Climate Change Bhupinder Yadav and Minister of State Kirti Vardhan Singh will participate in a tree plantation program at Namo Oxygen Park in Medangadi in the national capital under the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. Prime Minister Narendra Modi extended wishes to the countrymen on World Environment Day. In a social media post, Mr. Modi said that the day reaffirms the commitment to protecting the environment and furthering sustainable growth. Former Lok Sabha Secretary General and constitutional expert Subhash C. Yadav passed away in New Delhi yesterday following a prolonged illness. Dr. Kashyap was part of the high-level committee headed by former President Ramnath Kovind to prepare a legal framework on simultaneous elections. Author of over 100 books, he served as the Secretary General of Lok Sabha from 1983 to 1990. Russian President Vladimir Putin has hailed Moscow's strategic partnership with New Delhi and asserted that Western attempts to force India into scaling back its operation with Russia are futile and damaging to global stability. In an interaction with heads of leading global news agencies, Putin lauded India's economic growth and its independent foreign policy and said Russia is determined to expand its economic engagement with the country. The Russian president said that India's diplomatic engagement with the US does not hinder or undermine its time-tested relationship with Russia. India will take on arch-rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamagada Stadium in Japan today. The match will start at 3:30 p.m. IST. India entered the last four after finishing second in Pool A with 9 points. The team ended the group stage with a dominant 13-1 victory over Chinese Taipei after its only defeat game against host Japan. And that is the end of this news bulletin.

0: हेलो फरमाइश,
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो व्यवहार के सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आके टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए, आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, तू ही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच
1: जी
0: नहीं
1: सर।
0: रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर।
0: जी चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: 40 हजार।
1: विक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे?
0: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
1: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
0: क्वायला क्वायला।
1: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
0: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है भी।
1: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
0: गर्मी तो सर बहुत है अभी, अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
1: काय बारिश हो गई का?
0: जी बारिश हो गई 2 दिन तकों में।
1: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
0: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
1: हाँ।
0: हाँ।
1: अभी तो 9 तपा चल रहे कि खत्म हो गए?
0: जी सर, बिल्कुल 3 दिन बाकी हो सर, तन्नक को
1: तन्नक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है। काय
0: जी सर।
1: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं जी बताओ?
0: हमको सुना है पगला कहीं का।
1: है पगला कहीं का? को है पगला?
0: पगला कहीं का फिल्म का नंबर है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा तो हमारा।
1: ए दद्दा रे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
0: अच्छा जी आपसे बात करके
1: मजा आ गया, हमसे बात करके हमें सो ही मजा आ गया आपसे बात करके।
0: आनंद आया सर,
1: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है
0: जी। आपका बिल्कुल सर बुंदेलखंड जैसा बटका है बिल्कुल आपका।
1: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा क्यों मारा
3: क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों
4: मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा? वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या करती थी।

जाती है, वो पेड़ों पे चढ़ जाती है, ये मच्छर बीन बजाते हैं, वो अपना राग सुनाती है, वो ठुमक ठुमक नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरी भैंस को डंडा, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, वो खेत में चारा चरती थी, तेरे बाप का वो क्या कर

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है, वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है। अंगारा मेरी भैंस को डंडा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन?
1: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
0: ज्योति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए क्या हालचाल है पीतमपुर के?
1: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं?
1: जी
0: अब हमें ये बताइए,
1: बहुत ज्यादा।
0: हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाएं, छाता लेके जाएं, पानी
0: हाँ,
1: अपने साथ लेके जाएं
0: बहुत सही,
1: और
0: बिल्कुल
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले।
0: सही बात है। अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश है?
1: गाना फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोरोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा फिल्म के गाने सुनना चाहते। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिन्हें ना रहे इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या दर्द था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा, उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने दिल्ली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर, बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं?
0: नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये 3 दिन से थोड़ा सा, मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर, वो वाला फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक्ट जो शुरुआत किए हैं, 1 बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी। मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे मैं नहीं आप तो। मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया। क्या बात है,
0: मजा आ गया। क्या बात है, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े मतलब सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी,
0: अरे
1: तो आज
0: बाप
1: मैं
0: रे,
1: भी बात कर रही हूँ। यस
0: क्या बात है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है
1: यस
0: ना।
1: यस। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में सब आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात करूं।
0: ओहो, क्या बात
1: वो राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है,
0: है।
1: वैसे
0: जी
1: ही मैं आप भी मेरे जहन में हो।
0: जी
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत। सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ,
0: जी
1: लोग मेरे से तंग आ गए कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा, विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहे हैं आपके साथ, है ना।
1: हाँ, मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूंगी, उनका यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है जी। तो बताइए, कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब रहे हैं?
1: सभी कार्यम ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं,
0: जी
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: जी
1: हाँ,
0: जी जी
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ।
0: जी
1: सुबह 8 बजे से लेके मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है, न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
0: अच्छा, क्या
1: हाँ
0: बात है,
1: जी।
0: क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
1: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
0: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद हैं आपको।
1: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले आते, पूरा गाना सुना सकती
0: वाह वाह वाह,
1: हूँ।
0: ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो
1: और
0: आप
1: सब
0: कहती है
1: कुछ,
0: ना कि मैं
1: हाँ जी,
0: हमेशा कहता हूं, क्या बात है।
1: क्या बात है, थैंक यू। बचपन
0: जी शुक्रिया।
1: से आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम 57 नाउ, और मैं कम से कम 5 6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
0: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती
1: बस
0: सुनते हुए।
1: बस, सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
0: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
1: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात।

0: थैंक यू।
1: शुक्रिया। हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार।
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। एकदम
0: जी जी बताइए,
1: बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं
1: हाँ,
0: जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया। मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं,
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है, सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, और कई इसके कारण होंगे भैया। सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं, पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंक के, गीत के बोल है ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया दो महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

रंग तिरंग कार्यक्रम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं। मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राजकुमार रिजवी की आवाज से। कलाम है बशीर बद्र का।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा

0: होके इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं,
1: क्या बात
0: जैसे
1: है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सुमन जी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मुकेश की आवाज में आप सुन रहे थे ये गजल। कलाम था जिगर मुरादाबादी का। विविध भारती से यह है कार्यक्रम रंग तरंग।

0: भीड़ फिल्म का ये सोहर आप सुन रहे थे। रोमी के स्वर में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता।
0: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। इस कार्यक्रम में आपको

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मिताली सिंह की आवाज थी। एल्बम का नाम था नशे मन। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। राजेश रेड्डी की गजल पंकज उधास की आवाज में, एल्बम का नाम नबील।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में ये गज़ल आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम ख़त्म होता है। रंग

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।

मुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।

वो दिपेश जी अपनी पत्नी से ही पूछ बैठे तुम्हारा जन्मदिन कब पड़ता है। भावना हंसकर कहने लगी, बर्थडे फिर मन जाएगा, आपका साथ है तो सब बढ़िया है।

सब बढ़िया तो है भावना, लेकिन इस मन का क्या करें। तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा अगला बर्थडे बेस्ट होगा। मम्मी ने बताया था तुम्हें चंदेरी साड़ी लेने की बहुत इच्छा है। देखता हूँ बजट में बिठाते हैं, बर्थडे में ना सही बाद में ही सही, समझो वही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा रहा। क्या कहा, भावना ने आश्चर्य से कहा। मम्मी जी ने बताया कि मुझे चंदेरी साड़ी लेनी है। आपको पता है मैंने जिक्र किया नहीं और मम्मी ने पहले ही कह दिया कि दीदी के लिए चंदेरी साड़ी लेनी है सबसे पहले। मम्मी जी के लिए तो हर चीज पहले उनकी बेटी के लिए आएगी फिर बहू के लिए। बहू दिन भर उनका ध्यान रखे पर उनका मन तो अपनी बेटी में ही लगा रहता है। और तो और आजकल तो उनकी एक नई सहेली बन गई है, पड़ोस में नई किराएदार आई है ना मुक्ता, उससे आजकल मम्मी जी की खूब पट रही है। 2 दिन से लगातार आ रही है और जब आती है तो मम्मी जी अपने कमरे के गेट भी बंद कर लेती हैं। कल मैं चाय लेकर पहुंची तो जाने क्या बात कर रही थी, मुझे देखकर बिल्कुल चुप हो गई जैसे मेरी बुराई कर रही हूं और मैं पहुंच गई। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। भावना अब छोड़ो ये बात, लगता है माँ आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ तुम खाना लगाओ। लो मैं तो टहल कर आ भी गई और यहाँ खाना भी नहीं लगा मेज पर, और कोई हमसे कहता है कि खाना जल्दी खाया करो आप, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बेटा मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, अच्छे स्वास्थ्य की जरूरत तो तुम दोनों को भी होनी चाहिए, माँ ने थोड़ा डांटते हुए कहा। हाँ माँ आप सही कह रही हो, आगे से ध्यान रखेंगे, संदीप ने बात को संभालते हुए कहा और भावना से चुप रहने का इशारा किया। भावना को मम्मी जी की ये बातें ताने जैसी चुभ गई और उसके मन का रेडियो ये गीत गाने लगा। ससुर जी

और संदीप खाना खाने लगे। माँ अपने कमरे में सोने चली गई थी। भावना का मूड खराब हो चुका था। संदीप को पूरा एहसास था कि ज्वालामुखी फटने ही वाला है। वो तैयार था। देखा आपने क्या गलत कहा था मैंने? उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही तो कहा था ना। फिर भी कितना सुना दिया मुझे। इतना ध्यान रखती हूँ फिर भी कोई कदर नहीं मेरी। अरे वो भी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए कह रही थी, और तुमसे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो तो मुझे कह रही थी भावना, संदीप ने बचाव में कहा। हाँ हाँ मैं सब समझती हूँ, वो अक्सर ऐसा ही करती हैं। कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मेरी कमियां ही बताती रहती हैं और दीदी की हर जगह तारीफ। मुझे तो लगता है मुक्ता से भी मेरी बुराई ही करती होंगी। भावना ऐसा क्यों सोचती हो? नजरिया बदलो अपना। नजरिया बदलने से कई बार पूरा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तुम्हें क्यों लगता है कि माँ तुम्हारी बुराई ही करती हैं? तुम माँ को लेकर अपने पूर्वाग्रहों से बाहर तो निकलो, तुम्हें बेहतर लगेगा। घर में थोड़ी बहुत बातें तो होती ही रहती हैं, अब इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? माँ भी तो तुम्हारा ध्यान रखती हैं, बस उनके तरीके थोड़ा अलग हैं। अब सोचो तुम्हारी मम्मी भी तो तुमसे कितना प्यार करती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो अपनी बहुओं से प्यार नहीं करती। तुम परीक्षा की तैयारी कर सको इसलिए तो माँ तुम्हारा काम में हाथ भी बटा देती हैं, और इस पर थोड़ा बहुत डांट भी देती हैं तो टाल दिया करो, संदीप ने समझाते हुए कहा। मुझे पता था आप यही कहोगे, हमेशा की तरह। आजकल तो मम्मी जी अपनी सहेली के साथ व्यस्त रहती हैं, तो पूरा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। पढ़ाई कैसे हो? तो पढ़ाई होगी भी कैसे, पूरा ध्यान तो तुम्हारा माँ पर ही लगा रहता है। हाँ मुझे जो लगा कह दिया, भावना गुस्से में बोली। अच्छा अच्छा तुम नाराज मत हो मेरी प्रिये, तुम गलत सोचती हो। सही सोच रखो, जब तुम्हारी मम्मी घर पर कहती हैं कि पहले मेरी बेटी के लिए ये चीज आएगी, तब तो तुम खुश होती हो, और माँ वो बात कहें तो बुरी लगती हैं। मेरी मम्मी की बात तो आप ही ना करें, वो ऐसी नहीं है। वो तो मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखती हैं, पलकों पर बिठाती हैं उन्हें। ऐसा तुम्हें लगता है, थोड़ी बहुत बातें तो उनकी भी होती ही होंगी। छोड़िए इस बात को, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती, ये तो मन की बात है। प्यार तो दिल तक पहुंच ही जाता है, अगर उनके मन में मेरे लिए स्नेह होगा तो पहुंचेगा। भावना आज तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक दिन जरूर तुम्हें एहसास होगा कि मैं सही कह रहा था। बस समय रहते तुम्हें एहसास हो जाए।

अगले दिन भावना ने अपने मूड को ठीक किया। नया दिन, नई शुरुआत। मम्मी जी को चाय नाश्ता दिया। संदीप नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल चुका था। सब्जी अक्सर मम्मी जी ही बनाया करती थी, रसोई में भावना का पूरा साथ देती, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने मना कर दिया था। भावना, जो मन हो वो सब्जी बना लेना, मैं नहीं बना रही। और नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई।

उस दिन शाम की चाय पीकर ही मुक्ता अपने घर गई। देर शाम जब संदीप घर आया तो समझ गया कि आज भी भावना का मूड कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। जैसे ही उन्हें एकांत मिला, आ गई थी, शायद मम्मी जी ने ही बुलाया था, और शाम की चाय पीकर ही घर गई। आज भी मम्मी जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। दोपहर के समय तो खाना खाने के बाद मैं और मम्मी जी रोज रेडियो पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनते हैं। तुम्हें पता है, मम्मी जी का साथ देते देते मुझे भी रेडियो सुनने की आदत हो गई है। रेडियो सुनते सुनते मेरी पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। पर आज तो वो सखी सहेली सुनने भी नहीं आई। मैंने उन्हें बुलाया, फिर भी नहीं आई। कहा रात में सुन लूंगी या फिर कल सुनेंगे। तुम मुझे पहले बताओ, तुम्हें क्या बुरा लग रहा है, मुक्ता का आना या माँ का तुम्हारे साथ समय नहीं बिताना या सखी सहेली उनके साथ नहीं सुन पाना? संदीप ने शरारत भरी मुस्कुराहट से पूछा। सब कुछ, मम्मी जी ने ऐसा अब तक कुछ नहीं किया। हम एक दूसरे पर कितना ही नाराज हों, पर हमें एक दूसरे की आदत हो गई है। तुम्हें कहीं मुक्ता से जलन तो नहीं हो रही है? संदीप ने चुटकी ली। मेरी जीवन संगिनी, ओ मेरी अर्धांगिनी, अपने दिल को बड़ा करो, संदीप ने नाटकीय अंदाज में कहा। और माँ से नहीं, मम्मी जी से कहो, जाइए मम्मी जी, जी लीजिए अपनी जिंदगी। और फिर थोड़ा संजीदा होकर कहने लगा, वैसे माँ के प्रति तुम्हारा यह स्नेह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है, मैं कोई उनके दुश्मन थोड़े ही हूं? आखिर उन्होंने मुझे आपको जो दिया है। वाकई में? संदीप ने प्यार भरे अंदाज में कहा और दोनों खिलखिला पड़े।

Ah.

अगले दिन रोज की ही तरह संदीप ऑफिस के लिए निकल गया। मम्मी जी कुछ शांत सी थीं, अपने रोजमर्रा के कामों में लगी हुई थीं। भावना को उनकी शांति चुभ रही थी। वो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात निकलवाती, पर मम्मी जी हाँ हूँ सा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती। फिर वही शांति। दोपहर के बाद मम्मी जी के फोन की घंटी बजी और वो फोन लेकर अंदर चली गई। जब बाहर आई तो भावना ने कौतूहल से पूछा, क्या दीदी का फोन था? पर मम्मी जी ने कोई जवाब ही नहीं दिया।

ना को बड़ा बुरा लगा। ये मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? खैर, अब मैं भी इन पर ध्यान नहीं दूंगी। अपना काम कर दिया, बाकी उन्हें जो करना है करें। मैं तो मन लगाकर पढ़ाई करूं जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर इन्हें मेरी कदर होगी। और भावना ने यह सोचकर अपने सारे काम निपटाकर पढ़ाई करने बैठ गई। अगले कुछ दिन घर का माहौल ऐसा ही रहा। दिन गुजरे और वो खास दिन आ गया। आज भावना का जन्मदिन है। माँ ने सुबह सुबह भावना के बेडरूम का गेट खटखटाया। भावना, जाओ दरवाजा खोलो, लगता है माँ आई है तुम्हें विश करने। इतने सुबह कौन विश करता है, बर्थडे के दिन भी चैन से सो नहीं सकते, भावना ने खींचते हुए कहा। संदीप ने नींद में ही कहा, तुम्हें पता है ना, माँ हमें यूं ही सुबह सुबह चाय पिलाकर विश करती हैं। देखना, तुम्हारे लिए स्पेशल वाली चाय भी लाई होंगी। मैंने कहा तो था तुमसे, माँ हम में फर्क नहीं करती। ठीक है मम्मी जी के श्रवण कुमार, खोलती हूँ दरवाजा, भावना ने उठकर दरवाजा खोला। अरे मम्मी जी, आप इतनी सुबह? हैप्पी बर्थडे बेटा, हमेशा खुश रहो। मैंने सोचा रोज तुम चाय पिलाती हो, तो आज तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं चाय पिला दूं तुम्हें। ये लो गर्मा गर्म चाय, संजू के लिए नहीं बनाई, सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाई है। भावना ने मुस्कुराकर चाय की प्याली अपने हाथ में लेकर टेबल पर रख दी और मम्मी जी ने भावना को प्यार से गले लगा लिया। फिर उन्हें भावना थोड़ी असहज लगी तो वो कहने लगी, अरे बेटा माफ करना, तुम्हें विश करने की उत्सुकता में मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बहुत जल्दी जगा दिया। ठीक है, तुम आराम करो। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो उठ ही गई थी, आशीर्वाद दीजिए। और भावना ने ये कहकर उनके पैर छू लिए। मम्मी जी ने आशीर्वाद दिया।

माँ मेरे स्पेशल वाली चाय कहाँ है? बस भावना को पिला दी, संदीप ने माँ को छेड़ते हुए कहा। वो तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगी, माँ ने हंसते हुए जवाब दिया। इतने में भावना चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मम्मी जी वाकई आपकी स्पेशल वाली चाय का कोई जवाब ही नहीं, और संदीप को देखकर बोली, लीजिए आप ये चाय पीजिए। पारिवारिक खुशनुमा वातावरण में सबने मिलकर चाय नाश्ता किया। भावना आज खुश थी, एक तो जन्मदिन की खुशी और उस पर मम्मी जी का प्यार भरा बर्ताव जिसकी उसे हमेशा से चाह थी। मन ही मन सोच रही थी, बस आज दिन भर मम्मी जी ऐसी ही प्रेम वर्षा करती रहें और वो मुक्ता ना आए, बस मन गया मेरा जन्मदिन। इससे ज्यादा की मुझे उम्मीद भी नहीं है, यही बहुत है। संदीप को छुट्टी नहीं मिल पाई थी सो वो ऑफिस के लिए चला गया। इधर भावना अपने कामों में लग गई पर मम्मी जी का ध्यान दरवाजे की घंटी पर ही लगा था, और दोपहर ढलते दरवाजे की घंटी बजी। भावना कुछ काम कर रही थी सो उसने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी कोई है दरवाजे पर, क्या आप देख लेंगी? लेकिन मम्मी जी जानबूझकर अपने कमरे में चली गई, जैसे कुछ सुना ही ना हो। अब भावना को गुस्सा आना लाजमी था। मन ही मन बुदबुदाई, काम कर रही हूं पर नहीं कि दरवाजा भी मैं ही खोलूं, बाकी सब तो बहुत बिजी हैं। उसने दरवाजा खोला, उसके चेहरे का गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो चुका था। एक फूलों का गुलदस्ता और एक पार्सल, दोनों साथ में। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी दूर से उसे ताक रही थी। भावना बेहद खुश थी, खुशी खुशी मम्मी जी को बताया, मम्मी जी देखिए इन्होंने तो इतना बढ़िया सरप्राइज दिया है, सुंदर फूलों का गुलदस्ता और ये गिफ्ट पार्सल, शायद इसीलिए आज ऑफिस चले गए हैं कि ये सरप्राइज दे सकें। बढ़िया है बेटा, गिफ्ट तो देखो क्या है। हाँ मम्मी जी, और उसने गिफ्ट को खोला और वो लगभग उछल पड़ी, चंदेरी की साड़ी। मम्मी जी याद है आपको, हम उस दिन देख रहे थे तो यही साड़ी मैंने ऑनलाइन पसंद की थी। इन्हें कैसे पता चला? उफ, मुझे ये साड़ी इतनी पसंद आई थी और उन्होंने पता नहीं कैसे पर मुझे मेरे बर्थडे पर ही ये गिफ्ट कर दी। मैं तो आज बहुत खुश हूँ मम्मी जी। कितनी बातें बना रहे थे कि इस महीने नहीं हो पाएगा, बजट नहीं है, और देखिए। माँ भी उसकी खुशी देखकर खुश हो रही थी। भावना साड़ी लपेट कर नाच ही रही थी और उसके मन के रेडियो पर एक बार फिर से गीत बज रहा था। वो गीत था ये।

भावना बेसब्री से संदीप के आने का इंतजार कर रही थी। उसने वही चंदेरी की साड़ी पहन भी ली थी, उसे मैचिंग ब्लाउज भी मिल ही गया था। संदीप को आने में थोड़ी देर ही हो रही थी और घंटी बजी। भावना दौड़ी दरवाजा खोलने के लिए। संदीप अपने ही बचाव में कहने लगा, अरे भावना, वो तुम्हारे लिए केक लेने लगा तो थोड़ी देर हो गई। भावना मुस्कुराकर देख रही थी। भावना, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी थी? अब आप ज्यादा मत बनो, आपने ही तो आज कमाल कर दिया। मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन बर्थडे है, फूलों का गुलदस्ता, चंदेरी की मेरी पसंदीदा साड़ी, और आप कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। संदीप हैरान था, कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर घंटी बजी। भावना ने दरवाजा खोला, सामने मुक्ता थी। मुक्ता को देखकर यूं तो उसे खुशी नहीं होती थी, पर आज तो वो यूं ही बहुत खुश थी। हैप्पी बर्थडे भाभी, कैसी लगी साड़ी? आंटी ने खूब मेहनत करवाई, इतनी शॉपिंग साइट्स देखी तब जाकर ये साड़ी मिली। आंटी को आपको यही गिफ्ट करनी थी। भाभी बहुत लकी हो आप, आंटी को आपकी पसंद ना इतनी पता है, मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे साड़ी आपको पसंद तो आई ना? मम्मी जी की ओर देखकर मुक्ता कहने लगी, आंटी देखिए, रंग तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा ऑर्डर किया था। भाभी वैसे गुलदस्ता कैसा लगा? वो मेरा आइडिया था, बस मैंने उसमें पीले फूल भी जोड़ने के लिए कहा था। खैर आंटी जी, अब तो आप खुश है ना? भाभी आप जो एग्जाम दे रही हो उसमें अव्वल आओ, आंटी को तो आप पर इतना कॉन्फिडेंस है, वो कह रही थी आप अगले साल सरकारी अफसर बन जाओगी। कह रही थी मेरी भावना तो ऑनलाइन का काम चुटकियों में कर लेती है, पर उसके जन्मदिन पर सरप्राइज देना था इसलिए मुझसे हाथ मिलाना पड़ा। इतने में मुक्ता के फोन की घंटी बजने लगी और वो बाहर चली गई। मम्मी जी ने हंसते हुए कहा, कितना बोलती है ये लड़की, बस एक बार शुरू हो जाए, लेकिन अच्छी है, उसी से तो ऑर्डर करवाया, मुझे क्या आता है। भावना अब तुम मुझे सिखा देना, साड़ी पसंद आई? वही वाली है ना जो तुमने पसंद की थी? भावना अवाक होकर मम्मी जी को देख रही थी।

जी, ये सरप्राइज आपका था तो आपने बताया क्यों नहीं? और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दौड़कर मम्मी जी से लिपट गई। उसे बीते दिनों की सारी बातें अब एक अलग नजरिए से दिख रही थी। क्या फर्क पड़ता है बेटा, संजू ने दिया या मैंने? बात तो तुम्हारे चेहरे की खुशी से है। तुम्हारी खुशी कम तो नहीं हो गई ना कि सरप्राइज मैंने दिया है, मम्मी जी ने हंसते हुए कहा। अरे नहीं माँ, मेरी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। माँ, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, इसीलिए आपकी मुक्ता से सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी और ये मैं समझ ही नहीं पाई। फिर संदीप को देखकर कहने लगी, माँ ने मेरे लिए सब किया। और फिर कस कर मम्मी जी से लिपट गई। संदीप की भी आंखें भर आईं। माँ ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, बेटा तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। माँ, आज तक आपने मुझे तो सरप्राइज नहीं दिया, संदीप ने छेड़ते हुए कहा। फिर भावुक होकर कहने लगा, पर माँ ये साड़ी तो बहुत महंगी है, इतने पैसे? अरे तुम जो मुझे पैसे देते हो वो ही पड़े थे, मेरा अपना क्या खर्च है? एक प्रीति है, एक भावना है, और मैं, मुझे तो आप भूल ही जाओ, बस ये दोनों बेटियां ही हैं आपकी। अरे मेरे बेटे, अब प्रीति के लिए चंदेरी साड़ी लेने की जिम्मेदारी तुम्हारी, उसे भी तो दिलानी है ना। भावना ने शरारत भरी नजरों से संदीप को देखा और सब खिलखिला पड़े। मुक्ता भी आ गई और फिर भावना ने केक काटा और सबने गीत गाया।

0: खुशियों भरी कहानी।
1: हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
3: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोहरदगा के बक्सी डिप्पा में नवनिर्मित जैव विविधता पार्क का उद्घाटन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांसद सुखदेव भगत और उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बढ़ती गर्मी को देखते

रखते हुए प्रकृति की रक्षा बेहद जरूरी है। खूंटी समाहरणालय परिसर में आज विश्व पर्यावरण दिवस पर उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के नेतृत्व में पौधारोपण अभियान शुरू हुआ। इस मौके पर उपायुक्त ने नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करने, ठोस गीला कचरा अलग करने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ई कचरे का सही प्रबंधन कर पर्यावरण बचाने की अपील की। रामगढ़ के दामोदर नदी घाट पर आज नमामि गंगे योजना के तहत वृहद पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में अधिकारियों और आम लोगों ने पौधे लगाए। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए आज बैलगढ़िया पुनर्वास स्थल में नए उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। सांसद ढुल्लू महतो और प्रमंडलीय डाक अध्यक्ष राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग और डाक सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में मिलेगा। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और संताल परगना सहित 13 जिलों के लिए तेज हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची और खूंटी सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजधानी रांची में 6 और 7 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड वेमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले में कोल्हान डायनेमोज ने पलामू वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू वॉरियर्स ने ईशा केशरी के 54 रनों की मदद से 136 रन बनाए। जवाब में कोल्हान डायनामोज ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए।

वो हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है।

अब राहें अलग नहीं रही, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे। खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छांव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा, समय चाहे जैसा भी हो। साथ निभाने का ये वादा अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में

हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम्ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुल्म तुम्हारे होंगे, फिर भी गीत तुम्हारे ही गाए जाएंगे।

0: पहलो।
1: अब और कितना रूठोगे तुम? देखो मैं हार गई हूँ, अपने सारे गिले अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रख दी है। चलो अब मान भी जाओ, तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

मोहब्बत में इस कदर खो गए हम कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती की प्रसारण सेवा सुन रहे थे। आज के फनकार हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:32:55 हो चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण द्वारा।

0: अभी से थोड़ी देर बाद हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम घर आंगन, महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम चर्चा में। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, विश्व पर्यावरण दिवस पर महिलाएं आत्मनिर्भर बने। साथ ही वार्ता में आप सुनेंगे पर्यावरण संरक्षण सबके लिए जरूरी। वार्ताकार है सुधांशु तिवारी।
1: बहुत रहा।

छह बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। 6:02 पर हम अपने स्टूडियो से लेकर हाजिर होंगे ग्रामीण कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। चर्चा में कृषि वानिकी का पर्यावरण संरक्षण में महत्व, साथ ही नवजात बच्चों की देखभाल। वार्ता में मृदा में पोषक तत्वों का महत्व, वार्ताकार है संध्या चंद्रा। ग्रामीण सभा कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम सुनेंगे 6:30 पर। चर्चा में मृदा के 16 पोषक तत्वों एवं उनका महत्व, आज का विचार वृक्षारोपण का पर्यावरण संरक्षण में महत्व। भेंटवार्ता में आप सुनेंगे अनाज भंडारण में सावधानियां। भेंटवार्ता का अभिषेक पटेल कृषि विशेषज्ञ, भेंट करता है संतोष कुमार। आज का मौसम, आज का बाजार भाव इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे 6:55 पर। हम लेकर आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सभा में शामिल होंगे, जहां सुनेंगे 7:00 प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल।

शाम 7:15 पर आप सुनेंगे श्रोताओं विश्व पर्यावरण दिवस पर स्थानीय डाल्टेनगंज के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर रेडियो रिपोर्ट संकलन संतोष कुमार प्रस्तुति श्री संजीव लाल कुमार लाल की होगी। 7:30 पर आप सुनेंगे एक रंग फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 7:45 पर उड़ान रोजगार से जुड़ी बातें संकलन एवं वाचन मीनाक्षी करने के लिए। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे चित्रपट से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। 8:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल कार्यक्रम सुनेंगे। 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात्रि 8:45 पर 9:00 अंग्रेजी में समाचार। 9:15 में उर्दू में समाचार आप सुनेंगे। 9:30 पर विविध भारती की प्रसारण सेवा आज के फनकार आप सुनेंगे। रात्रि 10:00 हम लेकर हाजिर होंगे अपने स्टूडियो से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। 11:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र हिंदी में समाचार और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। अपनी सभा का समापन हम करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं ये थी हमारी आज की सभा में प्रायोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम घर आंगन।

पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर फैला हुआ वह पूरी व्यवस्था जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी, पहाड़ और मनुष्यों द्वारा बनाए गए शहर, गांव सब शामिल है। यह कोई बाहरी चीज़ नहीं है, बल्कि हम इसका ही एक हिस्सा हैं। मतलब है कि ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था जिसमें हवा हवा सांस लेने योग्य हो, पानी पीने योग्य हो, मिट्टी उपजाऊ हो, जंगल घने हों और जैव विविधता संतुलित हो। आज पूरी दुनिया एक बात पर सहमत है कि विकास तभी टिकाऊ है जब पर्यावरण स्वच्छ हो। यदि पर्यावरण दूषित हो गया तो मनुष्य का स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सब खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए पर्यावरण एक आदर्श नहीं, बल्कि जीवन की एक बुनियादी ज़रूरत है। हम इस स्वच्छ पर्यावरण के बारे में आज विस्तार से समझेंगे कि यह क्यों ज़रूरी है, इसके कौन कौन से घटक हैं, आज पर्यावरण किन खतरों से जूझ रहा है, इसके पीछे कारण क्या है और हम व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर क्या कर सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण का अर्थ और महत्व क्या होता है? स्वच्छ पर्यावरण का

मतलब केवल कचरा न फेंकना या पेड़ लगाना नहीं है, इसका व्यापक अर्थ है प्रकृति के सभी चक्रों का संतुलन में रहना। स्वच्छ पर्यावरण हमारे जीवन की आधार कैसे है? मनुष्य को जीने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरत है, हवा, पानी, भोजन। तीनों ही पर्यावरण पर ही निर्भर करते हैं। अगर हवा में धुआं, जहरीली गैसें हो तो इसके फेफड़े खराब होंगे। अगर पानी, नदियाँ और भूजल में केमिकल मिले हों तो बीमारियाँ फैलेंगी। अगर मिट्टी में जहर हो तो अन्न में भी वही जहर पहुँचेगा। स्वच्छ पर्यावरण का हमारे स्वास्थ्य में सीधा संबंध कैसे है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया में होने वाली 23% मौतें पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, हृदय का रोग बढ़ रहे हैं। दूषित पानी से डायरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां होती है। स्वच्छ पर्यावरण का मतलब है कि स्वस्थ शरीर और कम बीमारियां। स्वच्छ पर्यावरण हमारे अर्थव्यवस्था और रोजगार से संबंधित कैसे है? कृषि, मछली पालन, पर्यटन, जड़ी बूटी, लकड़ी और वन उत्पाद सब पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। भारत में 50% से अधिक लोग खेती से जुड़े हैं। अगर मिट्टी बंजर हो गई, बारिश पैटर्न बिगड़ गया, नदियाँ सूख गई तो किसानों की आजीविका खत्म हो जाएगी। स्वच्छ नदियाँ, स्वस्थ जंगल और जैव विविधता पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हैं। स्वच्छ पर्यावरण से जलवायु संतुलित कैसे रहती है? जंगल कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, महासागर तापमान नियंत्रित करते हैं, बर्फ की चादरें समुद्र जल संतुलित रखती है। स्वच्छ पर्यावरण का मतलब है स्थिर जलवायु। अगर यह बिगड़ गया तो बाढ़, सूखा, हीट वेव, चक्रवात जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, जिससे हर कोई प्रभावित होगा। नैतिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी। भारत में प्रकृति को देवी देवता मानने की परंपरा है। नदी, पहाड़, पेड़, पशु सब पूजनीय है। हमारे पूर्वजों ने वसुधैव कुटुंबकम का विस्तार दिया है, सॉरी विचार दिया है। स्वच्छ पर्यावरण रखना केवल विज्ञान नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और नैतिकता का हिस्सा है। स्वच्छ पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? स्वच्छ वायु। हवा में ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और बाकी अन्य गैसें होनी चाहिए। जब इसमें धुआं, धूल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाती है तो वायु प्रदूषण होता है। स्वच्छ वायु के लिए जंगल, हरे पेड़, कम वाहन धुआं, उद्योगों में फिल्टर जरूरी है। स्वच्छ जल। पानी तीन रूप में जरूरी है, पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग के लिए। नदियाँ, झीलें, तालाब, भूजल सब शुद्ध होने चाहिए। पानी में सीवेज, प्लास्टिक, भारी धातु, कीटनाशक मिलने से जल प्रदूषण होता है। शुद्ध जल का अर्थ है BOD, COD, भारी धातु और बैक्टीरिया की सीमा के भीतर होना चाहिए। उपजाऊ मिट्टी। मिट्टी के जैविक पदार्थ, सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का संतुलन जरूरी है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी कठोर और बंजर हो रही है। शुद्ध मिट्टी के लिए जैविक खेती, फसल चक्र, कंपोस्ट जरूरी है। जैव विविधता। एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर 80 लाख से अधिक जीव प्रजातियां पाई जाती है। भारत में 7 से 8% प्रजातियां पाई जाती है। हर जीव का पारिस्थितिकी में रोल है। मधुमक्खी परागण करती है, केचुआ मिट्टी उपजाऊ बनाता है, शेर जंगल का संतुलन रखता है। जैव विविधता कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र टूटता है। जंगल और हरियाली। जंगल बारिश लाते हैं, तापमान घटाते हैं, बाढ़ रोकते हैं, वन्य जीवों को घर देते हैं। भारत में वनावरण 24.6
62% है, जबकि राष्ट्रीय वन नीति में 33% लक्ष्य है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना और वनों की रक्षा करना जरूरी है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार और कारण कौन कौन से हैं? वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वाहनों का धुआं, कोयला आधारित बिजली घर, उद्योग, पराली जलाना, पटाखे, घरों में लकड़ी कोयला जलाना, और इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं? स्मॉग, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, सांस की बीमारियाँ। भारत में दिल्ली, कानपुर, गाजियाबाद जैसे शहर हर सर्दी में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। जल प्रदूषण के कारण क्या है? बिना ट्रीटमेंट के सीवेज नदी में छोड़ना, उद्योगों का रसायन, प्लास्टिक, कचरा में कीटनाशक, गंगा, यमुना, हिंडन जैसी नदियाँ अत्यधिक प्रदूषित हैं। भूजल में आर्सेनिक और क्लोराइड की समस्या कई राज्यों में है। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? प्लास्टिक, बैक्टरिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, रासायनिक खाद, कीटनाशक, मिट्टी के उर्वरक क्षमता कम हो रही है, जिससे पैदावार घट रही है। ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? तेज हॉर्न, लाउडस्पीकर, फैक्ट्री निर्माण कार्य, और इसका प्रभाव क्या है? तनाव, नींद की कमी, सुनने की क्षमता कम होना। ठोस कचरा और प्लास्टिक। भारत में हर साल 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक नदियों और समुद्र में जाकर समुद्री जीवों को मार रहा है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों, वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन, और इसका प्रभाव है ग्लेशियर पिघलना, समुद्र तल बढ़ना, असामान्य बारिश, हीट वेव। भारत में 2023 से 24 में कई जगह 50 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया गया था। स्वच्छ पर्यावरण के न होने से नुकसान। अगर स्वच्छ पर्यावरण स्वच्छ न रहे तो इसका असर हर वर्ग पर पड़ेगा। गरीबों पर असर कैसे पड़ता है? गरीब झुग्गियों में रहते हैं, जहाँ सीवेज और कचरे की समस्या सबसे ज़्यादा है। उनके पास RO या एयर प्यूरिफायर नहीं होता। प्रदूषण से वही सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। किसानों पर असर कैसे पड़ता है? बेमौसम बारिश, सूखा, ओला फसल बर्बाद कर देता है। कीटनाशकों से लागत बढ़ती है, मुनाफा घटता है। बच्चों पर असर कैसे पड़ता है? बच्चों के फेफड़े छोटे होते हैं, इसलिए वायु प्रदूषण का असर उन पर ज़्यादा होता है। WHO के अनुसार 90% बच्चे प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर असर किस प्रकार से होता है? प्रदूषण से स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ता है, काम के दिन घटते हैं, कृषि उत्पाद घटता है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वायु प्रदूषण से भारत को GDP का 3 से 4% नुकसान होता है। जैव विविधता का नुकसान कैसे होता है? हर साल हजारों प्रजातियां विलुप्त हो रही है, इससे पारिस्थितिकी चक्र टूटता है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए सरकारी प्रयास। भारत सरकार ने कई कानून और योजनाएं बनाई है। सबसे पहले हम कौन-कौन से कानून भारत सरकार ने बनाए हैं उसके बारे में जानेंगे। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980, जैव विविधता अधिनियम 2002। भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण के लिए कौन-कौन सी सरकारी योजनाएं चलाई गई हैं उनके बारे में जानेंगे। नमामि गंगे योजनाएं, गंगा सफाई के लिए 20,000 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत मिशन योजना, खुले में शौच मुक्त भारत और कचरा प्रबंधन, उज्ज्वला योजना, LPG देकर लकड़ी कोयला का धुआं कम करना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम योजना, 131 शहरों में AQI सुधारने का लक्ष्य,
मिशन लाइफ योजना।

0: पर्यावरण के लिए जीवन शैली में बदलाव, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता। भारत ने पेरिस समझौते के तहत 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य है। स्वच्छ भारत के लिए नागरिकों की भूमिका कैसे है? सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक नागरिक जागरूक न हो। पर्यावरण स्वच्छ नहीं होगा। व्यक्तिगत स्तर पर पर्यावरण को स्वच्छ कैसे रखा जा सकता है? प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करें, पानी बर्बाद न करें, नल बंद रखें, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। सार्वजनिक वाहन, साइकिल या पैदल चलें, बिजली बचाएं, एलईडी बल्ब इस्तेमाल करें, कचरा अलग-अलग कर दें, गीला सूखा खतरनाक, पटाखे, तेज हॉर्न, लाउड म्यूजिक से बचें। सामाजिक स्तर पर पर्यावरण स्वच्छ कैसे रखा जाए और इनमें नागरिकों की भूमिका कैसे हो सकती है, इसके बारे में हम अब जानेंगे। मोहल्ले में साफ सफाई अभियान चलाएं, स्कूल कॉलेज में पर्यावरण क्लब बनाएं, तालाब नदी पार्क को गोद लें, स्थानीय नेताओं से मांग की सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। किसानों की भूमिका कैसे है? जैविक खाद और कीटनाशक अपनाएं, पराली न जलाएं, हैम्पी सीडर या बायो डिकम्पोजर इस्तेमाल करें, ड्रिप इरिगेशन से पानी बचाएं, उद्योग और व्यापार जीरो वेस्ट प्लांट लगाएं, रिसाइकल और रीयूज पर जोर दें, CSR फंड से जंगल और जल स्रोत बचाएं। पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण। भारत में हजारों साल से पर्यावरण संरक्षण की परंपरा है। चिपको आंदोलन से महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर पेड़ों की कटाई रोकी। राजस्थान के बिश्नोई समाज ने काले हिरण और खेचड़ी के पेड़ के लिए जान दी। जोहड़, बावड़ी, तालाब पारंपरिक जल संरक्षण के उदाहरण हैं। पंच तत्व का सिद्धांत कहता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सब पूजनीय है। आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को मिलाकर ही स्वच्छ पर्यावरण संभव है। भविष्य की चुनौतियाँ और समाधान। चुनौतियाँ, जनसंख्या बढ़ रही है, शहर फैल रहे हैं, खपत बढ़ रही है। 2050 तक भारत की जनसंख्या 1.67 अरब होगी। ऊर्जा की मांग दोगुनी होगी। प्लास्टिक कचरा 3 गुना बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा खतरा है। इसका समाधान क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दें, जैसे सौर, पवन, हाइड्रोजन। सर्कुलर इकोनॉमी, कचरे को संसाधन बनाना। हरित शहर, ज़्यादा पार्क, मेट्रो, साइकिल ट्रैक। शिक्षा, स्कूल से ही पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। तकनीकी, AI और सैटेलाइट से जंगल कटाई प्रदूषण की निगरानी करें। स्वच्छ पर्यावरण कोई विकल्प नहीं है, बल्कि जीवन की पहली शर्त है। अगर हवा जहरीली होगी तो अमीर गरीब सब बीमार होंगे। अगर नदियाँ सूखेगी तो खेती नहीं होगा। अगर जंगल कटेंगे तो बारिश नहीं होगी। हम प्रकृति से लेते बहुत हैं, लेकिन लौटाते बहुत कम हैं। अब समय है कि हम उपभोक्ता से संरक्षक बनें। हर व्यक्ति एक बदलाव ला सकता है। एक पेड़, एक थैला, एक बूंद पानी, एक दिन साइकिल चलाना छोटा लगता है, लेकिन करोड़ों लोग के करने से बड़ा बदलाव आ सकता है। स्वच्छ पर्यावरण का मतलब है स्वस्थ शरीर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, सुरक्षित भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर धरती। इसलिए यह हम आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं, संवारें और स्वच्छ रखें। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी पर व्यक्ति की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। अगर हम लालच कम करें, प्रकृति का सम्मान करें।
1: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय

0: दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। इस सिलसिले में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत और सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। पूर्व मध्य रेलवे के बरवाडीह गरवा रोड खंड पर मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से 27 घंटे बाद भी अप ट्रैक पर परिचालन बाधित है। मलबे को हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, जबकि वैकल्पिक रिवर्सल लाइन से मालगाड़ियों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। हादसे के कारण आधा दर्जन पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। रामगढ़ स्टेशन मुख्यालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्र से आए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से राज्य जल्द नक्सल मुक्त होगा। डीजीपी ने भूमि माफिया पर नकेल कसने और लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एसआईटी गठन की बात कही। गोड्डा के कर्पूरी नगर में 3 दिनों से बिजली गुल रहने से गुस्साए लोगों ने आज सरकंडा चौक जाम कर दिया। स्थानीय निवासियों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही और छोटा ट्रांसफार्मर लगाने का आरोप लगाया। बिजली सहायक अभियंता सुरेंद्र गुप्ता के आश्वासन और तत्काल ट्रॉली ट्रांसफार्मर लगाने के बाद जाम हटाया गया। रांची के डोरंडा स्थित शौर्य सभागार में आज नशाखोरी के खिलाफ 2 दिवसीय मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो के सैफ उमर और सीआईपी के डॉक्टर संजय कुमार मुंडा ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र से प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:02 हो चुके हैं और हम लेकर हाजिर हैं ग्रामीण और कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी। और जैसा कि आप सभी को पता है श्रोताओं की, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। और विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है ये हम सभी जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, यानी आज के दिन, ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हों। यह केवल पेड़ लगाने का दिन नहीं, बल्कि अपनी आदतों को सोचने का दिन है, आदतों पर सोचने का दिन है, जो हमारी बहुत हमारे अंदर खराब आदतें हैं पर्यावरण को लेकर। हमारी सोच जो है, खुद के लिए सोचना लेकिन उसके लिए न सोचना, ये आज के दिन क्या हम समझ लेंगे तो हम समझ लेंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए। नहीं, इसके लिए हमें भले ही आज का दिन विशेष इसलिए होता है कि आज हम खुलकर खुली हवा में जो सांस हमारी प्रकृति हमें देती है उसके लिए पेड़ पौधे लगाएं, जागरूक हों, पेड़ पौधे आज लगाएं और कल वो पेड़ पौधे सूख जाएं, ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी है कि हमारा सहयोग, उसमें समय पर खाद डालना, पानी डालना, जानवरों से बचाना, उसे सुरक्षित रखना। आज हम 50वें पेड़ पर्यावरण दिवस के नाम पर लगा दें और कल देखें कि पेड़ मुरझाए हुए हैं, तो ये सही नहीं है। एक पेड़ लगाएं लेकिन अगर उसे सुरक्षित रखेंगे तो एक से हज़ारों पेड़ हमारे साथ होंगे। बढ़ती गर्मी और हीटवेव, पेड़ों की कटाई, प्लास्टिक प्रदूषण, पानी की कमी, हवा की खराब होती गुणवत्ता, हम सब महसूस कर रहे हैं कि गर्मी पहले से ज़्यादा बढ़ रही है। जिस शहर में, जिस राज्य में अभी तक गर्मी नहीं होती थी, किसी किसी राज्य में लोग कूलर नहीं रखें, एसी नहीं रखें, वो अपनी ज़िंदगी को बहुत प्राकृतिक रूप से जीते हैं क्योंकि वहाँ पे हमेशा इतनी गर्मी नहीं होती। आज के समय में वहाँ उस जगह भी बहुत गर्मी होने लगी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रकृति अपना करवट बदल रही है। घर में पौधे लगाएं, बिजली बचाएं, ज़रूरत हो तो गाड़ी कम इस्तेमाल करें, ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, पैदल चलें, इससे 2 फायदे होंगे। प्रकृति सुरक्षित रहेगी, आप भी सुरक्षित रखेंगे और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी संभलेगी। पर्यावरण बचाने के लिए सुपर हीरो बनने की ज़रूरत नहीं, बस रोज़मर्रा की छोटी आदतों में बदलाव ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, अगर पेड़ बोल सकते हैं तो शायद हमसे यह कहते हैं, अगर नदियाँ शिकायत करती तो क्या कहती। कभी इस बारे में सोचा है? आप बताइए। आप पर्यावरण बचाने के लिए कौन सा छोटा कदम उठा रहे हैं? तो आइए, धरती हमें हम सब कुछ देती है, धरती हम सभी को, लेकिन बदले में केवल

थोड़ी सी जिम्मेदारी मांगती है। आइए इस विश्व पर्यावरण दिवस पर वादा करें कि हम प्रकृति को केवल इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उसकी रक्षा भी करेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारे पूर्वजों की विरासत नहीं आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। पेड़ बचेंगे तो सांस बचेगी, पानी बचेगा तो कल बचेगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। तो आइए ये हम सबको सबके लिए सोचने की बात है और ये हमारी जिम्मेदारी है, पर्यावरण को सुरक्षित रखें, पर्यावरण को बचाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर एक ये बहुत ही ये आपसे सहयोग के लिए ये अगर हम कहें कि संदेश है, आइए हम मिलकर संकल्प लें, संकल्प आज के लिए नहीं उन सभी दिनों के लिए, हर रोज़ प्रकृति की गोद में जहाँ सांसें हम लेते हैं और पिता जैसी छांव बनकर साया बनकर वो हमारे साथ रहती है, आइए अपने माता पिता की जैसे सुरक्षा करते हैं वैसे ही प्रकृति का मान सम्मान करें और इसे अपने पिता तुल्य माता तुल्य समझें, तभी हमारे जीवन में वो बातें बैठेंगी जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो, प्रकृति की गोद में हम खुली सांस लें और प्रकृति भी खिलखिलाए मुस्कुराए। तो चलिए सुनते हैं ग्रामीणों कृषकों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कृषि कार्यक्रम में। बंधुओं, कृषि वानिकी एक ऐसी वैज्ञानिक और टिकाऊ कृषि पद्धति है जिसमें कृषि फसलों, फलदार और इमारती वृक्षों तथा पशुपालक को एक ही भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से एक साथ संचालित किया जाता है। यह प्रणाली किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जी हाँ बंधु, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण, जैव विविधता में कमी, इस प्रकार की कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इन सब के समाधान के लिए कृषि वानिकी को एक प्रभावी उपाय माना जा रहा है। कृषि वानिकी के पर्यावरणीय लाभ हैं मृदा संरक्षण, उर्वरता में वृद्धि। जी, कई लाभ हैं। पेड़ों की गहरी और मजबूत जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। जी हाँ बंधुओं, पेड़ों की गहरी और मजबूत जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे जल एवं वायु के द्वारा होने वाला मृदा कटाव कम हो जाता है। वृक्षों से गिरने वाली पत्तियाँ जैविक अवशेष सड़कर प्राकृतिक खाद का निर्माण करते हैं, जिससे मिट्टी में जैविक कार्बन, पोषक तत्व और नमी की मात्रा बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उर्वरता और उत्पादकता में काफ़ी सुधार होता है। जी, दूसरा है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। कृषि वानिकी प्रणाली वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके उसे अपने तनों, शाखाओं, जड़ों में संग्रहित करती है। जी हाँ बंधुओं, इस प्रकार यह एक प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने में मदद करती है। इससे वैश्विक तापमान वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। कृषि वानिकी जल संरक्षण और भूजल संवर्धन में लाभदायक है। पेड़ों की उपस्थिति वर्षा जल को भूमि में समाहित होने में सहायता करती है, जिससे भूजल स्तर में सुधार होता है। जी हाँ किसान बंधुओं, वृक्षों की छाया मिट्टी से होने वाली वाष्पीकरण को कम करती है, जिससे जल संरक्षण होता है। और इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भी नमी बनाए रखने में सहायक होती है। किसान भाई बहनों, कृषि वानिकी के काफ़ी लाभ हैं।

जैव विविधता का संरक्षण भी होता है। कृषि वानिकी खेतों को एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित कर देती है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पौधे, पक्षी, मधुमक्खियाँ और लाभकारी कीट यहाँ आश्रय प्राप्त करते हैं। इससे प्राकृतिक परागण बढ़ता है, कीट और रोगों का जैविक नियंत्रण संभव होता है। परिणाम स्वरूप रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है। जी किसान भाई बहनों, कृषि वानिकी सूक्ष्म जलवायु का निर्माण करते हैं। खेतों में लगाए गए वृक्ष तेज हवाओं की गति को कम करते हैं और फसलों को लू, आंधी और अन्य प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वृक्षों की छाया खेत के तापमान को संतुलित बनाए रखती है, जिससे फसलों की वृद्धि और उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बंधुओं, कृषि वानिकी प्रदूषण नियंत्रण और हरित आवरण में वृद्धि करता है। पेड़ वायु में मौजूद धूल, धुआं और अन्य प्रदूषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। कृषि वानिकी के माध्यम से हरित क्षेत्र का विस्तार होता है, इससे पर्यावरण की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होता है। कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि कृषि वानिकी केवल खेती की एक तकनीक नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का एक सशक्त माध्यम है। जी और यह मृदा एवं जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, कार्बन अवशोषण और किसान बंधुओं की आय वृद्धि जैसे अनेक लाभ प्रदान करती है। इसलिए वर्तमान समय में कृषि वानिकी को अपनाना न केवल आपके लिए लाभकारी है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और संतुलित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। जी हाँ बंधु, कृषि वानिकी के अनेक लाभ हैं और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि पेड़ पौधे कितने आवश्यक हैं हमारे लिए, इस धरती के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए। पेड़ों की अंधाधुंध जो कटाई हो रही है, अनावश्यक पेड़ काटे जा रहे हैं और शहरों का विकास होता जा रहा है, जंगल घटते जा रहे हैं, मेड़ों से भी पेड़ हटाए जा रहे हैं, इससे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। आवश्यकता है कृषि वानिकी से लाभ लेने की, पर्यावरण को संरक्षित रखने की, और यह हर प्रकार से हमारी मदद करता है, हमारे लिए लाभदायक है। जी हाँ बंधुओं, तो ये तो हुई कृषि वानिकी की बातें, और अब हम बातें कर लेते हैं छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो हम आसानी से कर सकते हैं। कई किसान बंधु सिर्फ एक फसल पर निर्भर नहीं करते, वो कई तरह के फसल लगाते हैं। जी और सब्जियाँ, ये तो कम लागत में अधिक मुनाफे का सुनहरा अवसर प्रदान करती हैं। जी सब्जियों की खेती से काफ़ी लाभ होता है, सब्जियों की खेती में कम लागत में अधिक मुनाफे का अवसर मिलता है, और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है ही, और यहाँ किसान भाई बंधु अपनी आय बढ़ाने में सब्जी उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका अपना सकते हैं। जी हाँ, सब्जी उत्पादन करके वो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। पारंपरिक फसलों की तुलना में सब्जियों की खेती कम समय में अधिक उत्पादन और बेहतर आय प्रदान करती है। यदि किसान वैज्ञानिक तकनीकों, उन्नत बीजों और उचित प्रबंधन को अपनाएं, तो वे कम भूमि में भी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ बंधुओं, यदि आपके पास कम भूमि है, आपके घर के आसपास थोड़ी सी ज़मीन है, तो भी आप वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर और अच्छे बीजों को लेकर के उचित प्रबंधन जो भी आवश्यक है उसे यदि आप अपनाते हैं,
तो सब्जियों की खेती से आपको काफ़ी

मुनाफा हो सकता है। आज के समय में बढ़ती हुई जनसंख्या और पोषण के प्रति जागरूकता के कारण ताज़ी सब्जियों की मांग पूरे वर्ष बनी रहती है। जी हाँ बंधुओं, क्योंकि आज के समय में सभी लोग जागरूक हो रहे हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी सेहत के प्रति, और लगभग सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें ताज़ी सब्जियां मिलें क्योंकि उसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं, और हर प्रकार की सब्जियां वो अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहते हैं। इसके कारण सब्जियों की मांग हमेशा बनी रहती है और यह आपके लिए लाभ का एक स्थायी स्रोत है। जी अब हम बातें कर लेते हैं कि सब्जियों की खेती क्यों है लाभकारी। जी किसान भाई बंधुओं, सब्जियों की खेती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें फसल चक्र छोटा होता है। कई सब्जियां 30 से 60 दिनों के भीतर तैयार हो जाती हैं और इससे साल में कई बार फसल हम प्राप्त कर सकते हैं और लगातार आय अर्जित कर सकते हैं। जी हाँ, इसके बहुत सारे लाभ हैं बंधुओं। कम समय में नगद आय की प्राप्ति होती है, कम भूमि पर अधिक उत्पादन करना संभव होता है, बाजार में पूरे वर्ष मांग बनी रहती है, इससे हम आय कमा सकते हैं, फसल विविधीकरण से जोखिम भी कम हो जाता है और रोज़गार के अधिक अवसर हमें प्राप्त होते हैं। आज के समय में, आज का जो दौर चल रहा है, सभी लोगों को नौकरी मिलना संभव नहीं है, भले ही वो कितनी भी पढ़ाई कर लें या पढ़े लिखे हों। तो ऐसे में आवश्यकता है कि पढ़ लिख कर यदि हम कोई ऐसा रोज़गार अपनाएं तो उससे भी हम काफ़ी लाभ कमा सकते हैं, अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो सब्जियों का उत्पादन लाभकारी हो सकता है। जी पोषण सुरक्षा के साथ साथ यह आर्थिक लाभ प्रदान करता है। अधिक मुनाफा देने वाली सब्जियां हैं वो भी हम जान लेते हैं कि किन किन सब्जियों से अधिक लाभ हमें प्राप्त हो सकता है। पत्तेदार सब्जियां, आज के दौर में हर कोई हरी पत्तेदार सब्जियां अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहता है और करता भी है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सभी जागरूक हो गए हैं। पालक, मेथी, धनिया, चौलाई, सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियां बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं। इनकी लागत कम होती है और स्थानीय बाज़ारों में हमेशा इनकी मांग बनी भी रहती है, तो ये एक अच्छा लाभकारी मुनाफेदार सब्जियां हैं ये सब, जिन्हें आप उगा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। फल वाली सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, शिमला मिर्च, ये सब्जियां किसानों को अच्छा लाभ देती हैं। यदि उचित देखभाल और उन्नत किस्मों का उपयोग हम करते हैं तो इससे उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, अगर हम किसी भी क्षेत्र में बंधु, अगर हम अच्छा काम करें, मेहनत करें, तो हमें उसका लाभ अवश्य ही मिलता है। बेल वाली सब्जियां, लौकी, करेला, कद्दू, खीरा, तोरई, ऐसी फसलें लंबे समय तक हमें उत्पादन देती हैं। एक बार फसल स्थापित होने के बाद कई महीनों तक लगातार उपज प्राप्त होती रहती है, तो आप बेल वाली सब्जियों को थोड़े से ज़मीन पर लगा सकते हैं। बेमौसमी सब्जियां, ये तो और भी फायदेमंद है। पॉली हाउस या नेट हाउस तकनीक के माध्यम से उगाई गई टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी जैसी सब्जियां बाज़ार में ऊंचे दाम पर बिकती हैं। जी हाँ, इसका बाज़ार मूल्य काफ़ी होता है और इससे आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो बेमौसमी सब्जियों का यदि आप उत्पादन करते हैं तो इससे आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। सफल सब्जी उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है, आइए यह भी जान लेते हैं। बंधुओं, उन्नत और प्रामाणिक बीजों का चयन करना चाहिए। जी सबसे पहले
उच्च गुणवत्ता वाले बीज।

बेहतर अंकुरण, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करते हैं। इसलिए हमेशा प्रमाणित और उन्नत किस्मों के बीजों का चयन करना चाहिए। जी, जब भी आप बीज लेते हैं तो आप अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों का चयन कीजिए। इससे बेहतर अंकुरण होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है और अधिक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। जैविक और संतुलित पोषण प्रबंधन, आप गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और हरी खाद का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। संतुलित पोषण से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों बढ़ते हैं। इसलिए यह भी ध्यान देने योग्य बातें हैं बंधुओं कि गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट, जीवामृत और हरी खाद का प्रयोग यदि आप करते हैं तो इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, संतुलित पोषण से फसल की गुणवत्ता भी बढ़ती है, उत्पादन भी बढ़ता है। आधुनिक सिंचाई तकनीक को अपनाना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली से पानी की काफ़ी बचत होती है और हमारे यहाँ तो पानी की कमी है ही, और गर्मी के मौसम में तो खासकर। ऐसे में यदि आप ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली से पानी की सिंचाई करते हैं तो इससे पानी का बचत है और पौधों को आवश्यक मात्रा में नमी प्राप्त होती है। इससे उत्पादन बढ़ने के साथ लागत भी कम होती है। जी हाँ, अब बारी आती है किसान बंधुओं रोग और कीट प्रबंधन की। समय समय पर आप अपने खेत का निरीक्षण करते रहें और एकीकृत कीट प्रबंधन तकनीकों को अपनाएं। जैविक कीटनाशकों और फेरोमोन ट्रैप का उपयोग फसल को सुरक्षित रखने में मदद करता है। तो आप समय समय पर निरीक्षण करते रहें कि आपकी फसल में कीड़े तो नहीं लगे हैं। कीट प्रबंधन करें, रोग से बचाएं और अच्छी फसल का उत्पादन करें। बाज़ार की मांग के अनुसार उत्पादन। जी हाँ बंधुओं, जिस सब्जी की स्थानीय बाज़ार में अधिक मांग हो उसी का उत्पादन करना अधिक लाभदायक होता है। फसल लगाने से पहले आप बाज़ार का अध्ययन करें, बाज़ार के बारे में जानें, क्योंकि जिस सब्जी की स्थानीय बाज़ार में जहाँ पे आप अपनी सब्जियों को ले जाते हैं, बेचते हैं, तो वहाँ पे उसकी मांग कैसी है उसको ध्यान में रखकर आप उत्पादन कीजिए, तो इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जी हाँ, आधुनिक तकनीक से आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। वर्तमान समय में यानी अभी जो आज का जो दौर है, ऐसे में पॉली हाउस, नेट हाउस, मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों ने सब्जी उत्पादन को एक नई दिशा प्रदान की है। इन तकनीकों की सहायता से मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप गुणवत्तापूर्ण सब्जियां उगा सकते हैं और बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और कई किसान भाई बंधु इन तकनीकों के माध्यम से प्रति एकड़ लाखों रुपए तक की आय अर्जित कर रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरह कई छोटी छोटी सी बातें हैं जिसे आप अपनाएंगे तो थोड़ी सी भूमि में, थोड़ी सी ज़मीन में भी आप सब्जियों का उत्पादन करके लाभ कमा सकते हैं और सब्जियों की खेती आय बढ़ाने का एक प्रभावी और टिकाऊ माध्यम है। बंधु, वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीज, जैविक पोषण, आधुनिक सिंचाई और बाज़ार उन्मुख उत्पादन को अपनाकर किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस दिशा में कार्य कीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। यदि सही योजना और तकनीक के साथ सब्जी का उत्पादन किया जाए तो यह खेती न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करती है बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और समृद्ध भी बना सकती है। जी हाँ बंधु, तो सब्जियाँ उगाइए, आधुनिक तकनीक

अपनाइए, खेती को लाभकारी व्यवसाय के रूप में अपनाइए। जी बंधुओं, कृषि के क्षेत्र में जब हम कार्य करते हैं तो कई ऐसी पद्धतियां हैं, कई ऐसी तकनीक हैं जिनकी जानकारी

इन सब बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो सचमुच आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं और कृषि के क्षेत्र में आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। बंधुओं, कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, बस आवश्यकता होती है पूरी लगन, मेहनत और उसे पूर्ण रूपेण अपनाने की। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी लाभ कमा सकते हैं। तो ये तो हुई बातें कृषि संबंधी, और इसी के साथ अब हमें इस कार्यक्रम से विदा दीजिए।

नमस्कार, स्वागत है आप तमाम साथियों का, तमाम किसान बंधुओं का हमारे कृषि कार्यक्रम में। बंधुओं, आइए आज बातें करते हैं वृक्षारोपण के महत्व पर। वृक्षारोपण का महत्व काफ़ी है, यह पर्यावरण संरक्षण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। वृक्षारोपण केवल पेड़ लगाने की प्रक्रिया नहीं है बंधुओं, बल्कि यह प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के संरक्षण का एक सशक्त माध्यम है। आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में वृक्षारोपण एक प्रभावी समाधान के रूप में सामने आया है। वृक्षारोपण अवश्य ही करना चाहिए। पेड़ पौधे पृथ्वी के फेफड़ों के समान हैं। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जो सभी जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। बंधुओं, इसके अलावा पेड़ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों को अवशोषित कर लेते हैं और वायु को शुद्ध बनाते हैं। वाहनों, उद्योगों, अन्य मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण को ये कम करते हैं, इसलिए वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है पर्यावरण संरक्षण में। वृक्षारोपण के लाभ केवल वायु शुद्धिकरण तक ही सीमित नहीं होते हैं बंधुओं, बल्कि पेड़ पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को अनेक प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। इनके बहुत से लाभ हैं, ये हम जानते हैं। स्वच्छ वायु और बेहतर स्वास्थ्य। जी, पहला, ये पेड़ वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। जी, और इसके साथ ही जो प्रदूषक तत्व हैं उन्हें कम करते हैं। इससे श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा घटता है और मानव स्वास्थ्य बेहतर बनता है। जी, दूसरा है, जल संरक्षण में ये सहायक होते हैं। बंधुओं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो वर्षा जल को भूमि में समाहित करने में मदद करती हैं। इससे भूजल का स्तर बढ़ता है, जल स्रोतों का संरक्षण होता है और ये वृक्ष वर्षा चक्र को भी प्रभावित करते हैं और नियमित वर्षा में योगदान देते हैं। मिट्टी का संरक्षण। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से बांधे रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन कम होता है। इससे कृषि भूमि की उर्वरता बनी रहती है और बाढ़ के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जी हाँ बंधुओं, पेड़ अनेक पक्षियों, कीटों और वन्य जीवों के लिए भोजन और आश्रय भी प्रदान करते हैं। इससे जैव विविधता सुरक्षित रहती है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो तंत्र है वह संतुलित रहता है। जी, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, कार्बन संग्रहण करते हैं और इससे ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन के

दुष्प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। पेड़ से हमें कई आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। जी हाँ, ये वृक्ष जीवनदायी तो हैं ही, साथ ही हमें हमेशा कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। जी, लकड़ी, रबर, फल, औषधीय उत्पाद, कागज और अनेक वस्तुओं का उत्पादन पेड़ों से होता है। ये हमें फल, फूल, सब्जियाँ ये तो प्रदान करते ही हैं, इसके साथ साथ इनके तने, इनकी जड़ें, इनकी पत्तियाँ सब कुछ लाभकारी हैं और किसी न किसी रूप में ये हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य ही प्रदान करते हैं। इससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। हरियाली से भरपूर वातावरण न केवल सुंदर दिखाई देता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। शोधों से ये पता चलता है बंधुओं के हरित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का मानसिक संतुलन, मानसिक स्वास्थ्य अपेक्षाकृत बेहतर होता है वैसे जगह के लोगों से जो बंजर जगह पर रहते हैं यहाँ पर, या फिर जहाँ पर हरियाली कम होती है, क्योंकि वहाँ का वातावरण प्रदूषित होता है जिसके कारण कई तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, स्वास्थ्य खराब होता है। और जहाँ पर हरियाली होती है, पेड़ अधिक होते हैं, वहाँ पर तन मन दोनों को शांति मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है बंधुओं कि आज जिस गति से जंगलों की कटाई हो रही है उससे पर्यावरणीय संतुलन गंभीर रूप से प्रभावित हो गया है। यदि समय रहते वृक्षारोपण को जन आंदोलन के रूप में नहीं अपनाया गया तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वायु, पर्याप्त जल और स्वस्थ पर्यावरण के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने जीवन क्रम में कम से कम कुछ पेड़ तो अवश्य ही लगाएं। जी हाँ, उनकी देखभाल करें। लगाने से ही काम नहीं बनेगा बंधुओं। जब हम पेड़ लगाते हैं तो उनकी देखभाल करना, उन्हें बड़ा करना, इसकी भी व्यवस्था होना चाहिए। एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है, यह कहावत हमें वृक्षों के महत्व का बोध कराती है। जी हाँ, तो आइए हम सब मिलकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, वृक्ष लगाएं, पृथ्वी को, धरती को हरित, स्वच्छ, सुरक्षित बनाने में अपना योगदान दें। जी, तो ये तो हुई पर्यावरण संबंधी वृक्षारोपण की बातें। और आइए अब हम बातें कर लेते हैं मृदा के पोषक तत्व और उनके महत्व की। जी, मृदा पौधों की वृद्धि और विकास का आधार है। पौधों को स्वस्थ रखने, अच्छी वृद्धि और अधिक उत्पादन देने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। ये पोषक तत्व मृदा से प्राप्त होते हैं। यदि मृदा में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए तो पौधों की वृद्धि प्रभावित हो जाती है और उपज कम हो जाती है। मृदा के कई प्रमुख पोषक तत्व हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक पोषक तत्व, यानी मुख्य पोषक तत्व, और इसकी आवश्यकता पौधों को सबसे अधिक होती है, नाइट्रोजन। बंधुओं, नाइट्रोजन पौधों की हरी वृद्धि के लिए आवश्यक है। जी हाँ, ये हरी वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल निर्माण में सहायक है, पत्तियों और तनों की वृद्धि को बढ़ाता है, फसल को गहरा हरा रंग प्रदान करता है। और यदि नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, उत्पादन कम हो जाता है। फास्फोरस, फास्फोरस जड़ों के विकास में सहायक है, फूल और फल बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है, बीज निर्माण और परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है, पत्तियों में बैंगनी रंग दिखाई देने लगता है, जड़ों का विकास कमज़ोर हो जाता है। जी,

पोटाश। बंधुओं, पोटाश पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जल का संतुलन बनाए रखता है, फलों की गुणवत्ता और आकार में सुधार करता है, और यदि इसकी कमी हो गई, यानी पोटाश की कमी हो गई, तो फिर पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं, पौधों की रोगों के प्रति संवेदनशील पौधे हो जाते हैं। अब द्वितीय पोषक तत्व, जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं, उसमें कैल्शियम। कैल्शियम कोशिका भित्ति को मजबूत करता है, जड़ों और नई कोपलों के विकास में सहायक होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, प्रकाश संश्लेषण में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सल्फर, सल्फर प्रोटीन निर्माण में आवश्यक होता है, तेलहन फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में भी अब जान लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं बंधुओं, उनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। जिंक, जिंक वृद्धि हार्मोन के निर्माण में सहायक है, पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। आयरन, आयरन क्लोरोफिल निर्माण में महत्वपूर्ण है, पत्तियों को हरा बनाए रखता है। मैग्नीज, मैग्नीज प्रकाश संश्लेषण और एंजाइम क्रियाओं में सहायक होता है। कॉपर, पौधों के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बोरान, यह परागण और वेफल निर्माण में सहायक होता है। जी, तो परागण की क्रिया और फल निर्माण में बोरान की आवश्यकता होती है, जड़ों की वृद्धि को भी यह बढ़ावा देता है। मोलीब्डेनम, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आवश्यक होता है। क्लोरीन, क्लोरीन जल संतुलन बनाने में सहायक होता है। अब आइए हम जान लेते हैं मृदा पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। पौधों की स्वस्थ वृद्धि और विकास सुनिश्चित करते हैं ये, फसलों की उपज और गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं, पौधों को रोगों और प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। मृदा पोषक तत्व जड़ों, तनों, पत्तियों, फूलों और फलों के समुचित विकास में सहायक होते हैं। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं, कृषि उत्पादन की लागत को ये कम करते हैं और लाभ को बढ़ाने में काफ़ी मददगार होते हैं। पौधों में पोषण संतुलन बनाए रखते हैं, मृदा पोषण प्रबंधन के अब उपाय भी जान लेते हैं। बंधुओं, नियमित मृदा परीक्षण करवाइए, अपनी मृदा का आप नियमित परीक्षण करवाइए, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कीजिए, जैविक खाद जैसे कि गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, इन सब का प्रयोग बढ़ाइए, हरी खाद और फसल चक्र को अपनाइए, जैव उर्वरकों का उपयोग करिए। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी यदि हो जाए तो उसका उचित प्रयोग करें। कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि मृदा के पोषक तत्व कृषि उत्पादन की रीढ़ हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे मुख्य तत्वों के साथ साथ द्वितीयक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व भी फसलों की वृद्धि और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए नियमित मृदा परीक्षण करवाइए, संतुलित उर्वरक का उपयोग कीजिए, जैविक पदार्थों के समुचित प्रयोग, इसके द्वारा मृदा की उर्वरता बनाए रखना आवश्यक है। इससे टिकाऊ कृषि को बढ़ावा मिलेगा और आपके आय में वृद्धि होगी। तो मृदा के महत्व के बारे में अभी आपने जाना, और हमारे कृषि कार्य के लिए सबसे पहले आवश्यक होती है मिट्टी। जी, हमारे खेतों की मिट्टी, उसकी उर्वरता कितनी है, वो कैसी है, इसकी जांच नियमित रूप से कराते रहना चाहिए और आवश्यक पोषक तत्वों का उपयोग

करना चाहिए। इससे कृषि कार्य में काफ़ी लाभ मिलता है और अच्छी आय प्राप्त हो सकती है। तो ये तो हुई कृषि संबंधी कुछ बातें, और अब हम बातें कर लेते हैं बंधुओं पशुओं की। जी, क्योंकि पशुधन भी हमारे कृषि के आधार हैं, और एक सफल पशु पालक अपनी पशुओं की देखभाल अपने बच्चों की तरह ही करते हैं। पशुपालन में जो नवजात बछड़े होते हैं, आज हम उनकी उचित देखभाल की बातें कर लेते हैं। पशुपालन में नवजात बछड़ों की उचित देखभाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। बछड़ा किसी भी डेयरी फार्म का भविष्य होता है। जन्म के बाद शुरुआती कुछ सप्ताह बछड़े के जीवन के सबसे संवेदनशील दिन होते हैं। जी हाँ बंधुओं, इस दौरान यदि सही देखभाल, पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन किया जाए तो फिर बछड़ा स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, अधिक उत्पादन क्षमता वाला पशु बनेगा। वहीं यदि लापरवाही की गई तो फिर रोग, कुपोषण और मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। नवजात बछड़े भविष्य के दुग्ध उत्पादन, पशुधन विकास की नींव होते हैं ये। जी हाँ, अगर बच्चियां हैं तो आप उनसे दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ बछड़े आगे चलकर उच्च उत्पादक गाय, भैंस, यानी जो भी हैं वो बनते हैं। इसलिए जन्म से ही उनकी वैज्ञानिक तरीकों से देखभाल करना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद की देखभाल, जब बच्चे यानी बछड़े या बछिया जो नवजात हैं जन्म लेते हैं, तो उस समय सबसे पहला कार्य होता है कि श्वसन मार्ग की सफाई करना। जन्म के तुरंत बाद बछड़े के या बछिया के जो भी हैं उनके नाक और मुंह में मौजूद श्लेष्मा को साफ करना चाहिए, यानी जो म्यूकस पाया जाता है उसको साफ करना चाहिए, जिससे वह आसानी से सांस ले सके। यदि वह सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है तो उसके शरीर को सूखे कपड़े से रगड़कर श्वसन क्रिया को सक्रिय किया जा सकता है। जन्म के बाद शरीर को साफ और सूखा कपड़े से पोंछना चाहिए। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, ठंड से भी बचाव होता है। यदि ठंड का मौसम है तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नाल यानी नाभि की देखभाल, जब नवजात जन्म लेता है तो नाल को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबाई छोड़कर काटना चाहिए और उस पर 7% आयोडीन या टिंचर आयोडीन का प्रयोग करना चाहिए। इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाता है। कोलेस्ट्रम का महत्व, जब नवजात बछड़े जन्म लेते हैं तो खीस अमृत के समान होता है। यह प्रसव के बाद निकलने वाला पहला गाढ़ा दूध होता है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, रोग प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। ऐसे में इसे बछड़ों को देना चाहिए। जो नवजात शिशु बछड़े हैं, बच्चियां हैं, उनको आप दीजिए। जन्म के 1-2 घंटे के भीतर खीस अवश्य पिलाइए। पहले 24 घंटे में पर्याप्त मात्रा में दीजिए। जन्म के पहले 3 दिनों तक पिलाना लाभदायक होता है और यह बछड़े की रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। क्योंकि यदि यह समय पर ना मिला तो फिर कई रोग के संक्रमण में आने की संभावना बढ़ जाती है। अब जो नवजात बछड़े हैं, बच्चियां हैं, उनके रहने का भी प्रबंध होना चाहिए, उचित प्रबंध होना चाहिए। नवजात बछड़ों के लिए स्वच्छ, सूखा और हवादार आवास होना चाहिए। अच्छे आवास की जो विशेषताएं हैं उसमें फर्श सूखा और साफ होना चाहिए। वर्षा और ठंडी हवाओं से, गर्म हवाओं से सुरक्षा हो। पर्याप्त धूप की व्यवस्था हो। नियमित सफाई हो, कीटाणु शोधन किया जाए और उचित स्थान

स्थान हो जहाँ पे बछड़ा बछिया आराम से रह सकें। गंदे और नम वातावरण में दस्त, निमोनिया और अन्य रोगों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए गौशाला की साफ सफाई आवश्यक है। खीस अवधि जब समाप्त हो जाती है उसके बाद भी नवजात को नियमित दूध पिलाना चाहिए, जो बछड़े बछिया हैं। दूध पिलाने में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है बंधुओं। दूध शरीर के तापमान के समान गुनगुना होना चाहिए। निर्धारित समय पर दूध पिलाना चाहिए। बर्तन को पूरी तरह साफ सुथरा रखना चाहिए। अधिक या कम मात्रा में दूध नहीं देना चाहिए। आमतौर पर यह होता है कि बछड़े को उसके शरीर के वजन के अनुसार दूध दिया जाता है और पूरक आहार की भी शुरुआत कैसे करें, आइए ये भी जान लेते हैं। बछड़ा 15-20 दिन की आयु से स्टार्टर देना शुरू आप कर सकते हैं बछड़े को। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन और खनिज होना चाहिए। 1 महीने की आयु के बाद मुलायम एवं पौष्टिक हरा चारा देना प्रारंभ किया जा सकता है। जन्म के कुछ दिनों के बाद से ही बछड़े को साफ और ताज़ा पानी उपलब्ध कराना चाहिए। पानी पाचन और वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य प्रबंधन की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसके लिए आपको नियमित निरीक्षण करने की आवश्यकता है। उसके व्यवहार, भूख, गतिविधियों पर आप प्रतिदिन ध्यान दें और किसी भी असामान्य लक्षण को नज़रअंदाज ना करें। नियमित समय पर टीकाकरण करवाएं। कृमि नाशन का भी आप उपयोग करें, क्योंकि आंतरिक परजीवियों से बचाव के लिए समय समय पर कृमि नाशक दवा देना भी ज़रूरी होता है। रोग नियंत्रण के लिए आप व्यवस्था करें, बीमार पशुओं को स्वस्थ बछड़ों से अलग रखें और पशु चिकित्सक की सलाह लेकर आप इलाज करवाएं। नवजात बछड़े में कई प्रमुख रोग हो जाते हैं, जैसे कि दस्त, डायरिया, और यह नवजात बछड़ों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है। इसमें जो लक्षण हैं उसमें पतले दस्त लगते हैं, कमजोरी हो जाती है, निर्जलीकरण हो जाता है और भूख कम लगती है। इससे बचाव के लिए आप समय पर खीस पिलाइए, साफ पानी और स्वच्छ वातावरण का प्रयोग करिए, बर्तनों की साफ सफाई पर ध्यान दीजिए। निमोनिया, यदि नवजात बछड़े बच्चों को निमोनिया हो गया है तो उसके लक्षण हैं कि खांसी आएगी, तेज सांस लेंगे, बुखार और नाक से स्राव होगा। इससे बचाव के लिए सूखा और हवादार आवास की व्यवस्था करिए। ठंड और नमी से बचाव रखिए, पर्याप्त पोषण व्यवस्था कीजिए। नाभि में संक्रमण हो जाए इसका भी आपको ख्याल रखना है कि उसमें संक्रमण ना होने पाए। यदि ऐसा हो गया है तो फिर आप उसका इलाज करवाइए, क्योंकि गंदी परिस्थितियों में नाल के माध्यम से संक्रमण हो सकता है। इससे बचाव के लिए जन्म के बाद आयोडीन का उपचार कीजिए। स्वच्छ प्रसव स्थल का ध्यान रखिए। खनिज मिश्रण और विटामिन के महत्व को भी आप जानिए और उसे भी दीजिए, क्योंकि बछड़ों की तेज़ वृद्धि के लिए खनिज मिश्रण और विटामिन आवश्यक है। कैल्शियम, फास्फोरस, तांबा, जिंक, विटामिन ए, डी और ई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। संतुलित पोषण से हड्डियाँ मजबूत बनती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। गर्मी और सर्दी में आप विशेष देखभाल की व्यवस्था करें। गर्मी के मौसम में छायादार स्थान उपलब्ध करवाइए, पर्याप्त स्वस्थ पानी दीजिए, गर्मी से बचाने के लिए उचित वेंटिलेशन रखिए, और सर्दी का यदि मौसम है तो बिछावन के लिए सूखे भूसे का प्रयोग कीजिए, ठंडी हवा से बचाव के प्रबंध कीजिए और गुनगुना दूध दीजिए। जब बछड़ा पर्याप्त मात्रा में स्टार्टर और चारा खाने लग जाए, तब उसकी आयु लगभग जब 2-3 माह की हो जाए, तब धीरे धीरे दूध छुड़ाया जा सकता है और अचानक दूध बंद नहीं करना चाहिए। और छोटी छोटी कुछ बातें हैं उसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जन्म के 2 घंटे के भीतर ही खीस देना चाहिए, नाभि को आयोडीन से उपचारित करना चाहिए, स्वच्छ और सूखे आवास की व्यवस्था करना चाहिए, संतुलित पोषण उपलब्ध कराना चाहिए, नियमित टीकाकरण, कृमि नाशन का उपयोग करना चाहिए, बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करें और बच्चों की वृद्धि का रिकॉर्ड रखें। तो ये तो हुई बातें, अब दीजिए इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी और ग्रामीण सभा। खेती बाड़ी में आपने सुना ग्रामीण और कृषकों को संबोधित कार्यक्रम। चर्चा में कृषि वानिकी का पर्यावरण संरक्षण में महत्व, साथ ही नवजात बछड़ों की देखभाल। वार्ता में मृदा के पोषक तत्वों का महत्व, वार्ताकार थे संध्या चंद्रा। आप ग्रामीण सभा भी सुन रहे थे कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम। चर्चा में मृदा के 16 पोषक तत्व एवं उनका महत्व। आज का विचार में वृक्षारोपण का पर्यावरण संरक्षण में महत्व, साथ ही भेंटवार्ता में अनाज भंडारण में सावधानियां। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम को। और श्रोताओं, बहुत सी बातें आज कार्यक्रम में, हर कार्यक्रम का एक रूप भी था, क्योंकि आज है वन संरक्षण पर्यावरण और हमारी विश्व पर्यावरण दिवस। और थोड़ी बात इस पे कर लेते हैं, पर्यावरण हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी। श्रोताओं, हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यावरण का मतलब सिर्फ जंगल या पेड़ पौधे हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा हर दिन पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। सुबह की हवा, पीने का पानी, खाने का अनाज, सब प्रकृति की देन है। आजकल हर कोई कह रहा है इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है। पहले जहाँ पंखे से काम चल जाता था, आज कूलर और एसी भी कम पड़ रहे हैं। ये बदलाव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं प्रकृति हमें संकेत दे रही है। पानी की अहमियत को जानना बहुत ज़रूरी है। कई जगह लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हैं। हम अक्सर नल खुला छोड़ देते हैं, लेकिन वही पानी किसी के लिए पूरे दिन की ज़रूरत हो सकता है। जहाँ तक पेड़ों के महत्व की बात है, तो श्रोताओं, एक पेड़ सिर्फ छाया नहीं देता बल्कि ऑक्सीजन देता है, तापमान कम करता है, पक्षियों का घर बनाता है और जीवन को संतुलित रखता है। प्रकृति और जीव जंतु का बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब पर्यावरण बदलता है तो अक्सर असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ता, पक्षियों, जानवरों और छोटे छोटे जीवों पर भी पड़ता है। कई पक्षियों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि उनके रहने की जगह कम होती जा रही है। घर से शुरू होने वाला बदलाव, जो हम कहते हैं कि अगर हम सोच समझ कर काम करें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो गीले और सूखे कचरे को अलग करना, बेकार जलती लाइट बंद करना, पुराने सामान को दोबारा उपयोग करना, पौधे की देखभाल करना, और अगर आपसे ये पूछा जाए श्रोताओं कि अगर आपको एक दिन के लिए धरती की जिम्मेदारी दे दी जाए, तो सबसे पहला बदलाव क्या करेंगे? क्या आपने कभी अपने घर में कोई पौधा लगाया या किसी पेड़ को बड़ा होते देखा? और कुछ अच्छी आदतें भी अपने में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति हमारी जब ज़रूरत पूरी कर सकती है, लालच नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये सही और असरदार बात है। धरती पर हर इंसान की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर इंसान के लालच के लिए नहीं। आज पेड़ लगाएंगे तभी कल छांव पाएंगे। इसका तात्पर्य यही था कि प्रकृति हमेशा हमें देती है। वो न लालच रखती, न भेदभाव रखती, और वो सबको एक बराबर देखती थी। जीव जंतु के लिए, हम इंसानों के लिए, हर किसी के लिए वो बराबर की सोच रखती है। तो हम ये क्यों नहीं सोचें कि प्रकृति को बचाएं? ये सबकी सोच होनी चाहिए। तो चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा समाप्त हुआ और अब हम आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सभा में शामिल होंगे। श्रोताओं, कुछ ही पलों में 6:55 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा, 7:00 प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल, बस थोड़ी देर में।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा।

0: राज्यपाल ने लोकभवन परिसर में किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में अगले दो दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता बैजनाथ राम ने बताया कि कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री से दोनों राज्यसभा सीटों पर जेएमएम प्रत्याशी उतारने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकृत किया गया है।
1: देखिए, जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता सबकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े, और इसके लिए हम लोगों ने माननीय केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो अंतिम निर्णय लेंगे। लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है, तो भाजपा को रोकने के लिए आवश्यक है कि जेएमएम दोनों सीटों पर चुनाव लड़े।
0: राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने महागठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा दोनों सीटों पर दावा करने के संकेतों के बीच कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जेएमएम कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह अटूट है। पार्टी नेता राजेश ठाकुर ने स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही लेंगे और सभी दल मिलकर चुनावी रणनीति तय करेंगे।
2: सभी लोग सोच समझ करके फैसला लेंगे, और इस संदर्भ में जो बेहतर है वो हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी ही बता पाएंगे, क्योंकि वही लगातार बातचीत कर रहे थे। और प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी की गठबंधन पूरी तरह एकजुट है, हमारे दोनों जो गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो चुनाव।
0: इस बीच अब से थोड़ी ही देर बाद रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक दल शामिल होंगे, जहां चुनाव की रणनीति और गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने पर गंभीर चर्चा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर कल सुबह 11 बजे रांची पहुंचेंगे। इस सिलसिले में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत और सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने कहा कि नितिन नवीन के झारखंड दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है।
2: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहला झारखंड प्रवास है, तैयारियां चल रही है और बहुत उत्साह है। आप देखेंगे पूरा शहर सज रहा है, लोग मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उनका जन्म भी इसी झारखंड रांची में हुआ है, वो बड़े भी पले बड़े भी यहाँ से, और भी उनका निकटता है।
0: हजारीबाग जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। रामगढ़ स्टेशन मुख्यालय के निर्देशन में हुए इस कार्यक्रम में केंद्र से आए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त जवानों की पेंशन और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं को सुना। कर्नल निलेश श्रीवास्तव ने कहा कि लंबित समस्याओं को मुख्यालय भेजकर फीडबैक लिया जाएगा।
3: यदि किसी की कोई समस्या थी तो हमारे पास एक मैकेनिज्म है कि उनकी जो भी समस्या है वो हम एक ग्रीवांस फॉर्म में रजिस्टर करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेंगे, और यदि वो इंडियन आर्मी के किसी भी आर्म से कंसर्न हो हम उस रिकॉर्ड ऑफिस को संपर्क करेंगे और उस रिकॉर्ड ऑफिस को उनकी समस्या बताएंगे और इंश्योर करेंगे कि वो रिजॉल्व हो, और इनको कॉन्टैक्ट करके हम फीडबैक लेंगे कि वो रिजॉल्व हुई कि नहीं।
0: राज्य की पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने आज मेदिनीनगर में पलामू प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि निरंतर अभियानों से राज्य जल्द नक्सल मुक्त होगा। डीजीपी ने भूमि माफिया पर नकेल कसने और लापता बच्चों की बरामदगी के लिए एएसआईटी गठन की बात कही। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर रांची स्थित लोकभवन परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने नागरिकों से प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाकर ही भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
1: लोगों से अपील भी करना चाहूंगा कि भाई एक पेड़ मां के नाम आज से कम प्रारंभ हमें करना चाहिए, ताकि पर्यावरण को हम सब लोग बचा सके। पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको हम लोग ठीक, अगर ठीक भी हमसे सब लोगों को करना, हर व्यक्ति का एक योगदान हो सकता है तो पौधा लगा करके हो सकता है।
0: लोहरदगा के बक्सी डिपा में नवनिर्मित जैव विविधता पार्क का उद्घाटन आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सांसद सुखदेव भगत और उपायुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रकृति की रक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से एक एक पौधा लगाने और इस पार्क को संरक्षित रखने की अपील की। धनबाद के झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र से विस्थापित परिवारों के लिए आज बैलगढ़िया पुनर्वास स्थल में नए उप डाकघर का उद्घाटन किया गया। सांसद ढुल्लू महतो और प्रमंडलीय डाक अध्यक्ष राजीव रंजन ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। सांसद ने कहा कि इससे स्थानीय लोगों को बैंकिंग और डाक सेवाओं का लाभ अपने ही क्षेत्र में मिलेगा।
2: यहाँ पे उप डाक घर नहीं था, बहुत परेशानी होती थी। यहाँ पे हमारे कोयला मंत्री जी आए थे, उस समय हम लोगों ने आश्वस्त किए थे कि बहुत जल्द यहाँ पे उप डाक घर हम लोगों ने खुलवाने का काम शुभारंभ हुआ है। इससे बहुत तरह का लाभ यहाँ के लोगों को पहुँच पाएगा, लोगों का समय का बचत होगा, लोगों को आसानी तरीके से कोई एक साधारण से साधारण लोग वहाँ पे जाकर अपनी हर सुविधा को वहाँ पे जानकारी ले सकता है।
0: और अब मौसम का हाल। राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और संताल परगना सहित 13 जिलों के लिए तेज हवाओं और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं रांची और खूंटी सहित 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राजधानी रांची में 6 और 7 जून को बारिश की संभावना है। झारखंड वीमेंस प्रीमियर लीग के 5वें मुकाबले में कुल्हान डायनेमोज ने पलामू वॉरियर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू वॉरियर्स ने ईसा केशरी के 54 रनों की मदद से 136 रन बनाए। जवाब में कुल्हान डायनेमोज ने 16.4 ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सियासी सरगर्मी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ की बैठक। दोनों सीटों पर प्रत्याशी उतारने के संकेत। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर कल पहुंचेंगे रांची। प्रदेश भाजपा ने तय की सांगठनिक कार्यक्रमों की रूपरेखा। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मेदिनीनगर में की प्रमंडलीय समीक्षा। बच्चों के लापता होने के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित। भूमि माफियाओं पर भी कसेगा शिकंजा। राज्यपाल ने लोकभवन परिसर में किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ने का किया आह्वान। और राजधानी रांची समेत राज्य में अगले 2 दिन बारिश और वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने धनबाद और बोकारो समेत 13 जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: झारखंड की फिल्म प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सशक्त मंच देने के लिए 26 से 28 जून तक होगा चित्रवट झारखंड फिल्म फेस्टिवल। पूरा आयोजन सरला बिरला विश्वविद्यालय रांची परिसर में होगा। महोत्सव 3 दिनों तक चलेगा। इसे लेकर

0: डाल्टनगंज में आयोजन समिति के सचिव पुलिन मित्रा ने पत्रकारों से बातचीत की और विस्तार से बताया।
1: मुख्य रूप से झारखंड राज्य स्तरीय है और झारखंड के ही लोक चाल भाषा, यहाँ के लोग और यहाँ की संस्कृति, ये सबसे रिलेटेड ही हम लोग को बढ़ावा देने के लिए एक सकारात्मक सोच, समाज में जो विघटन हो रहा है उसपे रिलेटेड ये सारे मुद्दों को रखते हुए तीन तरह के हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक शॉर्ट स्टोरीज पर जो शॉर्ट मूवी, इसके अलावा जो झारखंड की जो सभ्यता या यहाँ पर जो हेरिटेज है, ये सब के लिए विकसित करते हुए हम लोग उसके लिए डॉक्यूमेंट्री भी हम लोग माने रोजगार फरक भी हो, रोजगार से जुड़े। और मुख्य रूप से झारखंड राज्य स्तरीय है और झारखंड के ही लोग।
0: पलामू में थाना एवं चेकिंग पॉइंट के लिए डायल 112 के तहत 36 नई बाइक दी गई। पुलिस लाइन में समारोह आयोजित हुआ। पलामू के डीआईजी किशोर कौशल एवं एसपी कपिल चौधरी ने बाइक रवाना की। मौके पर डीआईजी किशोर कौशल एवं एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि
2: ये झारखंड सरकार के द्वारा सभी जिलों को चार पहिया वाहन और पहिया वाहन बंद कराए गए, जिससे कि सघन रूप से वृद्धि सुनिश्चित की जा सके। उसी चरण में पहले चार पहिया वाहन उपलब्ध कराए गए, दो पहिया वाहन भी उपलब्ध कराए गए, जिसे पलामू पुलिस के द्वारा और उसके गाड़ी जैसे जीपीएस में लगाया गया।
3: हमारे बाइक गाँव समझ 6 बाइक है, इसी समय में 6 बाइक सुधर ना रहा है। इसके अलावा जो 10 बाइक है जो हमने शहर के जो चारों तरफ जो एंट्री एग्जिट पॉइंट थे, जिनको नया हमने चेक पोस्ट बनाया है, 5 चेक पोस्ट बनाए गए, जिससे 5 चेक पोस्ट हर चेक पोस्ट में 2 व्हीकल हमने प्रोवाइड कराया है, जो नई बाइक और 2 बाइक हर चेक पोस्ट में होने। इसके अलावा 2 बाइक उन्हें ट्रैफिक हो रही है, ताकि कोई ट्रैफिक का एक बाइक दस्तर रहे, सूचना मिलने पर तुरंत कहीं जाम हटाया जा सके।
0: पलामू जिले की हैदरनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 4 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह एक कंपनी के साइट पर गोलीबारी की योजना बना रहे थे। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने विस्तार से मामले पर प्रकाश डाला।
4: हैदरनगर थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि राहुल सिंह गैंग के द्वारा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जो रोड बनाया जा रहा है उससे द्वारा लेवी मांगने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया है। एसडीपीओ हुसैनाबाद के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और एक छापेमारी दल के द्वारा जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा जाने लगा, तो उनके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। जब पुलिस के द्वारा खदेड़ कर पकड़ा गया तो उनके पास बैग में पिस्टल रिकवर हुई, जिसमें कि 2 9 mm की पिस्टल रिकवर हुई थी और इसके अलावा कुछ गोली उनके पास से बरामद हुई। इसमें 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
0: पलामू जिले की छतरपुर थाना क्षेत्र में चिल्हो खुर्द में पारा शिक्षक उदय सिंह की हत्या उसके साथ ही पारा शिक्षक सुरेंद्र यादव ने ही की थी। हत्या से पहले दोनों ने साथ बैठकर बियर भी पी थी। हत्या का कारण 25,000 के बदले 50,000 रुपया मांगा जाना था। छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने पूरे मामले की ब्रीफिंग की।
5: मृतक के पत्नी के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसके बेस पे हम लोगों ने FIR दर्ज किया, सुरेंद्र यादव से पूछताछ की और उसने अपने कन्फेशन में यह बताया। उसके साथ उदय सिंह ने हाथापाई किया था, तो इससे वो बहुत आहत था और इसी कारण उसने प्लान बनाकर कि इस घटना को कार्य।
0: झारखंड कैडर के वर्ष 2025 बैच के 7 भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक दल ने फील्ड दौरे के तहत पलामू टाइगर रिजर्व व बेतला नेशनल पार्क का दौरा किया। यहां उन्होंने बाघों के संरक्षण, मॉनिटरिंग, सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की पूरी जानकारी ली। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
6: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7 बजकर
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा प्रादेशिक समाचार जिले में आजकल। हम आकाशवाणी के डाल्टेनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हो चुके हैं। आइए हम सुनते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस 2026 पर स्थानीय डाल्टेनगंज के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर रेडियो रिपोर्ट। संकलन संतोष कुमार, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की है।
2: तमाम श्रोताओं को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार एवं विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। श्रोता मित्रों, आज दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार को स्थानीय डाल्टेनगंज के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा थाना रोड स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड सरकार

0: माननीय वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर, माननीय पलामू जिला सांसद श्री विष्णुदयाल राम, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता पलामू श्री आनंद कुमार, पलामू जिला उपायुक्त श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अनुमंडल पदाधिकारी सुश्री सुलोचना मीणा एवं महापौर पलामू श्रीमती अरुणा शंकर एवं गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग डाल्टेनगंज द्वारा पौधारोपण का कार्य किया गया। इसके साथ ही स्थानीय कोयल नदी के तट पर पहुंचकर वन परमंडल पदाधिकारी डाल्टेनगंज श्री सत्यम कुमार एवं अन्य पदाधिकारियों की देखरेख में वन कर्मियों द्वारा बिखरे पड़े कूड़े कचरे का निस्तारण भी किया गया। मौके पर उपस्थित वन परमंडल पदाधिकारी डाल्टेनगंज श्री सत्यम कुमार।
1: जी हाँ श्रोता, और आज विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में डाल्टेनगंज वन परमंडल पदाधिकारी श्री सत्यम कुमार जी, सर नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: आज के संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे?
2: आज हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस बृहत पैमाने पर यहाँ मनाए हैं
1: जी।
2: पहला इवेंट हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में साफ सफाई पौधारोपण से हम लोग शुरू किए
1: जी।
2: उस अवसर पर झारखंड सरकार के माननीय मंत्री, वित्त विभाग, माननीय सांसद, यहाँ की महापौर, माननीय महापौर और जिले के उपायुक्त, यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति एवं अन्य शहर के जितने भी गणमान्य लोग, आम जनता जिनके साथ हम लोग काम करते हैं, उन लोगों की भी अच्छी सहभागिता रही। मीडिया के
1: उपस्थिति में सारा कार्यक्रम किया गया।
2: हाँ, उनकी उपस्थिति में ही किया गया। और इस साल का जो मतलब हम लोग का जो विश्व पर्यावरण का थीम अगर देखेंगे तो उसके थीम से ही स्पष्ट है कि जो हम लोग को क्लाइमेट चेंज का जो सोल्यूशन ढूंढना है वो प्रकृति से ही लेना है। उस थीम को लेके हम लोग आगे बढ़े। और अगर आप ऐसे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर देखेंगे तो पर्यावरण का जो सुरक्षा है, संवर्धन है, वो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है। क्योंकि हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, उसके भी आर्टिकल 21 में भी हमारा पर्यावरण है। उसके बाद अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी जाएंगे
1: जी,
2: तो भी हमारा जो 51A में भी हम लोगों को पर्यावरण के बारे में कुछ कर्तव्य हम लोग को दिया गया कि हम लोग को अच्छा रखना है वातावरण को। और दूसरा जो संविधान में नीति निर्देशक तत्व है, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर जो सांसद हैं, विधायक हैं, जो नियम बनाते हैं देश को गवर्न करने के लिए, तो उनको भी एक संवैधानिक दायित्व दिया गया है कि आप क्लीन इन्वायरमेंट के लिए कुछ नियम कानून बनाइए। और समय समय पर हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो लोग EPA एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट या बहुत सारा हमारा बन ही लीजिएगा तो IFA है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इस तरह के बहुत सारा लेजिस्लेशन को भी किया है। तो हम नटसेल में अगर सबको देखें तो उसको देखने से लगता है कि पर्यावरण एक सामुदायिक जिम्मेदारी है
1: जी।
2: आप गांव के आम किसान, प्रधान से लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सबको एक सामूहिक जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो किसी एक डिपार्टमेंट या एक आदमी से
1: जुड़ा हुआ नहीं है,
2: स्वच्छ नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं रह सकता।
1: सभी से है,
2: हाँ, सभी से जुड़ा इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण को ही ले तो हमारा आवरण है, उसमें तो सब है, जीव है, जंतु है, घास है, पेड़ है, पशु पक्षी है, हम लोग हैं, हम लोग तो एक मतलब एक क्रिएचर भी हम लोग हैं इस यूनिवर्स के
1: जी।
2: इकोसिस्टम हमारा ठीक नहीं रहेगा, हमारा जो फूड चेन, फूड वेब जो होता है कि भाई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है
1: जी, जी।
2: घास को ग्रास ऑपर खाएगा, ग्रास ऑपर को और कोई बड़ा जानवर खाएगा, फिर बड़ा जानवर का जब डेथ हो जाएगा तो उसका डीके के लिए एक बैक्टीरिया है, फंगाई है, तो जो छोटा से छोटा जो हमारे यहाँ जो जीव है
1: जी।
2: उससे लेके जो सबसे विशालकाय प्राणी है
1: उनका
2: एक, हाँ, एक इस हमारे इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंस है। अगर कि कोई एक फूड चेन में मिसिंग हो जाएगा तो हमारा जो एनवायरमेंटल बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा
1: जी।
2: तो इसलिए हम लोग को हर जीव जंतु और जंगल के बारे में सोचना है
1: जी। और कौन कौन से कार्य किए?
2: उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कोयल नदी है उसका हम लोग सफाई किए, जो गार्बेज वगैरह था वो भी एक मतलब जैसे आप ये बोल सकते हैं, आप मीडिया से तो हमसे पूछ सकते हैं कि एक दिन के सफाई से क्या पर्यावरण
1: बिल्कुल
2: स्वस्थ हो गया,
1: यही हम जानना चाह रहे थे।
2: हाँ, तो
1: लोग एक दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं
2: तो उस वही हमको कहना है। जैसे हम लोग तो पर्यावरण के लिए सालों भर काम करते ही रहते हैं, पौधा लगाते हैं, अभी जैसे बरसात हो जाएगा पौधा लगाएंगे, फिर पौधा लगाने के बाद उसका होइंग बीडिंग करेंगे, फिर सेकेंड होइंग बीडिंग करेंगे
1: जी।
2: उसके बाद अगले साल हम क्या करेंगे, उसका APO बनाएंगे, उसके बाद फिर जब हम लोग गाँव जाते हैं तो गाँव के लोगों का लाइवलीहुड कैसे अच्छा हो, उसका आर्थिक उन्नयन कैसा हो, तो उनसे फिर हम लोग बातचीत करते हैं। उसके अलावा बहुत सारा डेवलपमेंटल रोल भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इनडायरेक्टली दिया गया है। जैसे मान लीजिए कहीं जंगल में रोड बनना है, नदी है, नाला है, बिजली का लाइन जाना है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जाना है, तो उसमें भी हम लोगों का समय जाता है। या फिर दूसरा वन विभाग के पास एक और जिम्मेदारी है जिसके बारे में मतलब आम लोगों को बहुत कम ही पता है कि एक डीएफओ को एक क्वासी जुडिशियल जिम्मेदारी भी दी गई है। और हमारे जो रेंज ऑफिसर एंड बिलो को हैं, बिलो रेंज ऑफिसर एंड बिलो जितने भी पदाधिकारी या कर्मी हैं उनको एक और जिम्मेदारी पुलिसिंग की भी दी गई है। कहीं फॉरेस्ट में जंगल कट जाए तो उसको रक्षा करना, उसको ऑफेंस करना, बनवाद दायर करना, उसको फिर जुडिशियरी के सामने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना। तो हमारा जो डे टू डे फंक्शनिंग है तो उसमें हर तरह का जिम्मेदारी हमारे पास है। पर्यावरण का रक्षा भी करना है, अगर कोई कुछ पर्यावरण के अगेंस्ट जो काम कर दिया तो उनको पनिश भी कराना है। लेकिन हम लोग जो देश का जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर है हम लोग उसके साथ काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये ध्येय नहीं होता है कि हम लोग लोगों को जो है मतलब जो हमारा प्यूनिटिव आस्पेक्ट है उससे हम चीज़ों को अच्छा रखें। हमारा होता है जनसहभागिता और एडुकेशन। तो आज जो आप देखेंगे हम लोग रिवर क्लीनिंग किए तो वो भी एक ये था सिम्बोलिज्म ही था कि जैसे वहाँ गए हम लोग चुने तो कम से कम वहाँ पे जितना दुकानदार है ठाली रिक्शा वाला वो लोग एक डे टू डे बेसिस पे प्लास्टिक वेस्ट को वहाँ फेंकते हैं नदी में, एटलीस्ट वो हम श्योर हैं कि आज से 15-20 दिन तो कम से कम वो नहीं फेंकेंगे, मोरल प्रेशर उस पर होगा। फिर उसके बाद और कोई इवेंट आएगा, वन महोत्सव आएगा, उसमें भी हम लोग प्रेरित करेंगे। फिर कुछ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी प्रेरित करेंगे। तो हम लोग लोगों के टच में ही रहते हैं। और हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव जो सबसे निचले पायदान पे समाज में उन पे पड़ेगा। अब फूड प्रोडक्टिविटी कम होगा तो फूड ग्रेन महंगा होगा, अनाज महंगा होगा। तो सबसे पहले अगर फूड स्कार्सिटी होगा तो उस परचेजिंग पावर जिसका कम है उन्हीं को दिक्कत होगा। उन तो हम लोग को पर्यावरण ये सोचना होगा कि हम लोग को जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट पुअरेस्ट ऑफ पुअर पे है। और अगर हम लोग जिस देश में रह रहे हैं जो हम लोग का जो फाउंडिंग फादर ऑफ नेशन था उनका जो विजन था और ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट था कि जो भाई समाज का वेल ऑफ आदमी है, जो समृद्ध आदमी है उसका उत्तरदायित्व है कि जो गरीब आदमी है वो भी मेन स्ट्रीमिंग हो उसका, वो भी अच्छा से पढ़े
0: जी।
2: वो भी एक सोसाइटी है जो सोसाइटी इवॉल्व करे, ठीक। और हम लोग को ये भी सोचना होगा जैसे हमारा देश आर्थिक उन्नति करेगा तो हमारे यहाँ लोगों का क्षमता विकास होगा, रोजगार सृजन होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, तो उससे सब लोगों को के हित में काम होगा। सब लोगों को मतलब क्लाइमेट चेंज को अगर हम मिटिगेट करके रखेंगे हमारा किसान भी खुश रहेगा, उनका फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़िया रहेगा, हमारे फिशरमैन को फिशिंग बढ़िया से हो पाएगा। और हमारे जो जैसे हम लोग शहर में रह रहे हैं मान लीजिए मेदिनीनगर में, तो अगर हमारा रेन अच्छा होगा तो वाटर टेबल अच्छा होगा, हमारा जो पीने का पानी का समस्या नहीं होगा। टेम्परेचर जैसे इस साल या हम लोग ऑब्जर्व किए कि लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो वो थोड़ा कम होगा, हाँ हीट स्ट्रोक कम होगा। लोगों को हेल्थ इज वेल्थ हम लोग कहते हैं, तो अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो हर आदमी हेल्दी होगा।
0: अभी वृक्षारोपण की तैयारी भी चल रही है तो ऐसी स्थिति में 3 पौधों का चुनाव करना हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए काफी बेहतर होगा।
2: हम जो है किसान भाई को ये कभी नहीं कहेंगे कि आप जो है अपने जमीन पे यही पौधा लगाइए, ये उनको देखना है कि उनका क्या आवश्यकता है।
0: अच्छा।
2: उनको अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा अपना लैंड बचा हुआ है और उनको है कि नहीं हम टिम्बर प्रजाति का पौधा जैसे टिक लगा लेंगे उससे हम बेचेंगे 20-30 साल के बाद, तो वो लगा सकते हैं। किसी किसी का होता है कि नहीं हमको घर में बच्चों को खाने के लिए या बेचने के लिए फल चाहिए तो फलदार पौधा लगाएं। लेकिन कोई ना कोई अपना, हम सबसे अनुरोध करेंगे कि आपके जो खेत है जहाँ आप खेती करने जाते हैं वहाँ आपके पास कम से कम एक फल का पौधा तो जरूर होना चाहिए, एक फलदार पौधा होना चाहिए। बरगद, पीपल, नीम ये सब हम लगा लेंगे, हम जंगल की बीमारी बहुत सारी भूमि है, हम लोग मदद करेंगे लोगों को लगाने में। और हम लोग भी इस साल जैसे मास लेवल पे हम लोग इमली लगा रहे हैं,
0: अच्छा
2: जामुन लगा रहे हैं, और जैसे अभी हम लोग को सीड अवेलेबल हो जाएगा जामुन और महुआ का,
0: अच्छा
2: हम लोग लार्ज स्केल पे हम लोग वो सीड सोइंग कर रहे हैं। और एक आप जंगल जिले भी जब आप हम सब बचपन में देखे होंगे मंकी पॉट जंगल जिले भी बोलते हैं, जंगल जिले भी अभी उसका मेडिसिनल वैल्यू है बहुत महंगा मिलता है, बाजार में आप मिलेगा ही नहीं। और अगर आप अमेजोन या कोई भी जो हमारा जो ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है उस पर देखेंगे उसका कीमत 1,000 रुपया तक है।
0: अच्छा,
2: फल का मंकी पॉट का
0: जी।
2: और मंकी पॉट यहाँ पे पहले लोग बताते हैं जंगल में बहुत बहुत आयत में था, विलुप्त होता जा रहा है, हम लोग उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं। और दूसरा जैसे हम लोग फलदार पौधा बहुत लगाएंगे तो जो मंकी मेनास है वो भी घटेगा। तो इस बार हम लोग का टारगेट है कम से कम 1,00,000 पौधा जो है हम लोग इस तरह का वितरण हम लोग जंगल में लगाएंगे, इमली का, महुआ का, जामुन का, इमली का, मंकी पॉट का, आंवला का, इस तरह का पौधा लगाएंगे। जिससे उससे दो फायदा होगा, एक तो हमारा जो जंगली जानवर है खास करके बंदर उसको भी फायदा होगा, और प्लस लोगों को भी एक इमली अगर जाएगा चुनने के लिए तो कम से कम उसको इकट्ठा करके बेचेगा बाजार में। इसके अलावा हम लोग बांस वगैरह तो नियमित तौर पर हमेशा लगाते रहते हैं, वो भी फिर लगाएंगे। तो हम लोग जो मतलब हमारा कहने का मतलब हम लोग जो वृक्षारोपण कर रहे हैं उससे जो लघु वनोपज होगा उसको भी हम लोग ध्यान में रख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे किसान है जो जो हमारा वनों पे जिसकी निर्भरता है, वन के आसपास रहने वाले जो ग्रामीण है,
0: उसकी आर्थिक स्थिति,
2: हाँ,

0: अगर ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, तो हम आपके लिए हम अपने यहाँ पे जो है जंगल क्यों बचाएं,
1: क्यों बचाएं,
0: हमको क्या मिलेगा, तो उससे एक मतलब सेंस ऑफ जो इंटरडिपेंडेंस नहीं आएगा, समझ गए। और अगर हम अगर कुछ ऐसा पौधा लगाएंगे जिससे उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलेगा, तो उसको ऑन करेगा वो, उसको मतलब हमको एक जो हमारे फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट लोग हैं
1: जी,
0: उनका जन सहभागिता प्लांटेशन को अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है
1: जी।
0: उनको हमको बताना है कि नहीं, जो वन विभाग कर रही है आप ही के लिए कर रही है
1: जी। अच्छा, वितरण का भी कार्यक्रम होता है सर, पौधा वितरण?
0: पौधा वितरण तो ऐसा हमारे यहाँ भी नहीं होता है, लेकिन हमारा नर्सरी है, वहाँ पर सस्ते दामों पर लोगों को पौधा उपलब्ध करा दिए जाते हैं जिनको अपना खेत में लगाना है।
1: अच्छा।
0: और हमारे सामाजिक वानिकी प्रमंडल है,
1: अच्छा,
0: लातेहार और गढ़वा, उनका यहाँ पे दो रेंज है।
1: अच्छा।
0: और उस रेंज के माध्यम से जन वन योजना होता है, फिर आप जो नरेगा में भी एक बिरसा हरित ग्राम योजना राज्य स्तर की योजना है, राज्य सरकार की योजना भी है
1: जी।
0: इसके अलावा नरेगा से भी प्लांटेशन होता है, तो बहुत सारा जो फ्री वाला प्लांटेशन का स्कीम है वन विभाग के द्वारा भी है और कुछ ग्रामीण विकास के द्वारा भी है
1: जी। तो हमारे श्रोता वहाँ से जुड़ सकते हैं और उसका,
0: हाँ, बिरसा हरित ग्राम चेतना जो है उसके लिए नोडल अधिकारी उप विकास आयुक्त हैं, ठीक है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और जो प्रधानमंत्री जनवन योजना है
1: जी, जी।
0: उसके लिए जो सामाजिक वानिकी प्रमंडल है, सामाजिक वानिकी प्रमंडल हमारे पलामू में नहीं है, वो गढ़वा में और लातेहार में, लेकिन उन दोनों का एरिया हमारा पलामू पूरा कवर कर लेता है। जो कुछ पार्ट जो है आधा पलामू जो है लातेहार सामाजिक वानिकी प्रमंडल के अंतर्गत है और आधा गढ़वा सामाजिक वानिकी, और हम जहां हम लोग बैठे हैं चैनपुर में, उनके दोनों रेंज का ऑफिस भी यहीं है। तो अगर कोई किसान जनवन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जनवन योजना का, तो यहां रेंज में आवेदन कर सकते हैं। हाँ, उनको कास्ट प्रजाति का भी और फलदार दोनों का स्कीम है, और सरकार पूरा पैसा उनको जो भी खर्च होता है वो देती है।
2: आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हम आपके श्रोताओं के माध्यम से पहले तो वन विभाग की तरफ से सबको विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, और हम सबसे अपील करते हैं कि हम लोग को जो अपना लाइफ स्टाइल होता है
1: उसको बदलिए।
0: हाँ, उसको अच्छा करना है और
1: बेहतर
0: करना है। जैसे हमारा हैबिट भी जो है क्लीन एंड ग्रीन होना चाहिए। हमको भी एक ऐसा नहीं कि हम सारा जिम्मेदारी गरीब वेंडर जो रोड पे सब्जी बेच रहा है उसी का, हमारा भी, हम जब जाएं तो एक गन्नी बैग लेके जाएं
1: जी,
0: और अगर हम आसपास में कोई पेड़ पौधा है तो उसको हम लोग बचाएं, अगर कहीं खाली जगह हमारे घर के आसपास है
1: तो लगा दें,
0: तो हम लोग एक पेड़ पौधा लगाएं ताकि हमारा भी वातावरण स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा
1: जी।
0: और जो हमारे सुदूरवर्ती गाँव के जो भाई बंधु हैं उनको हम बोलेंगे कि जो फॉरेस्ट है उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो लघु वनोपज है
1: जी,
0: उसका संग्रहण करें, उससे भी आपको कमाई होगा
1: जी, जी।
0: और वनों का मतलब कटाई नहीं करें, और अगर कोई कटाई कर रहा है तो उसके सुरक्षा में हमको सहयोग दें।
2: ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे श्रोता चाहें तो वो कहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं?
0: अगर कहीं वनों की कटाई जी, हो रही है जी, तो जी, हमारा जो वन विभाग जो यूनिट इकाई है तो ग्राम के लेवल पे सब बीट होता है, वहाँ पे एक हमारे वन रक्षी होते हैं, उसके ऊपर एक बीट होता है,
1: अच्छा,
0: वहाँ वनपाल होते हैं, फिर बीट के ऊपर वन प्रक्षेत्र होता है, वहाँ वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी होते हैं, फिर उसके ऊपर एक सहायक वन संरक्षक होता है, फिर डीएफओ होता है। तो किसी के यहाँ भी कंप्लेन कर सकता है, वो हम डीएफओ को ही बता सकता है कि यहाँ पे पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, और हम लोग त्वरित संज्ञान भी लेते हैं।
2: सर, आप हमारा कार्यक्रम से जुड़े और आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे श्रोताओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक भी किए, इस शुभ कार्य के लिए आपको आकाशवाणी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे आज दिनांक 5 जून 2026 दिन शुक्रवार को स्थानीय डाल्टनगंज के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखंड सरकार द्वारा थाना रोड स्थित भीमराव अंबेडकर पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के आयोजन पर आधारित रेडियो रिपोर्ट। कार्यक्रम संकलनकर्ता थे संतोष कुमार, कार्यक्रम संयोजनकर्ता एवं प्रस्तुतकर्ता थे संजीव कुमार लाल।
3: और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:30 और 37 सेकंड हो चुके हैं, हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। श्रोताओं, फिल्म वीर जरा के गाने को आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में, मदन मोहन के संगीत, जावेद अख्तर के।

आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग, हम लेकर हाजिर हैं। और अब आइए सुनते हैं सिर्फ तुम के इस खूबसूरत से नगमे को उदित नारायण की आवाज में, समीर के बोल है नदीम श्रवण के संग।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। अभी आपने सुना साधना सरगम मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी के संगीत, फिल्म का नाम त्रिदेव। अब आइए सुनते हैं फिल्म दिल के गाने को सुरेश वाडकर अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। समीर के बोल हैं, आनंद मिलिंद के संगीत।

0: और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम उड़ान, रोजगार से जुड़ी बातें संकलन निर्वाचन मीनाक्षी करण के हैं।
1: कार्यक्रम उड़ान में स्वागत है आप तमाम श्रोताओं का। श्रोताओं, आज के इस अंक में हम आपसे बातें करेंगे मेडिकल क्षेत्र में कैसे बनाएं अपना करियर, इस विषय पर। श्रोताओं, हमारे जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं पास की है और जिनका उद्देश्य मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाना है, तो वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है श्रोताओं कि उन्हें सफलता हासिल नहीं होती है। लेकिन मंजिलें और भी हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहते हैं तो MBBS के अलावे बहुत से ऐसे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको करके आप इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे जो युवा छात्र हैं, इन कोर्सेज को करने के बाद सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र को बेहतरीन पेशा माना जाता है और डॉक्टर्स को प्रसिद्धि की नज़र से तो देखा ही जाता है। लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हर वर्ष डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए नीट की परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ छात्र को मन चाही सफलता नहीं मिल पाती है। तो हम आपको बता दें श्रोताओं कि नीट की परीक्षा ही डॉक्टर बनने का एकमात्र तरीका नहीं है। उससे भी अलग मेडिकल क्षेत्र में विभिन्न तरह के कोर्स मौजूद हैं जिसे करके आप इस क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप 12th के बाद एडमिशन ले सकते हैं और ग्रेजुएशन कोर्स कर उच्च शिक्षा के लिए परास्नातक डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में आप BSc नर्सिंग, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc बायोलॉजी, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंस, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियक, बैचलर ऑफ साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह के कोर्स करके आप रोजगार के कई अवसर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में मेडिकल क्षेत्र में रोजगार की कमी नहीं है। इन कोर्सेज को करने के बाद किसी प्राइवेट

0: अस्पताल से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं और समय समय पर सरकार की ओर से भी नौकरियां निकाली जाती हैं जिनमें भाग लेकर सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद खुद की संस्था या दवा कंपनी भी खोल सकते हैं। श्रोताओं, इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनती होना होगा, साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। कुछ कॉलेज NEET के स्कोर के माध्यम से BSc नर्सिंग और दूसरे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश आयोजित करते हैं और कई अन्य पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हैं जिनमें छात्र प्रवेश ले सकते हैं, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान की पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, पैरामेडिकल विज्ञान पाठ्यक्रम नैदानिक प्रयोगशालाओं में नैदानिक उपकरणों, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और परीक्षणों की सहायता से विभिन्न चिकित्सा स्थितियों और बीमारियों के आपातकालीन चिकित्सा, उपचार, निदान और उपचार को प्रबंधित करने और संभालने के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा से संबंध रखते हैं। भारत में पैरामेडिक्स की कमी हर समय देखी जाती है और ये शाखा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक मांग वाली शाखाओं में से एक बनती है। भारत में MBBS के अलावा उच्च वेतन वाले करियर विकल्पों में से ये एक है। इसके अलावा अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन जैसे पाठ्यक्रम को अपनाकर रोजगार के अवसर ढूंढे जा सकते हैं। BSc नर्सिंग जैसा कार्यक्रम जो 4 साल का है चिकित्सा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके अलावा कोई भी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स या हेल्थ केयर में MBA जैसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपना करियर संवार सकता है। इन पाठ्यक्रमों में से स्नातक उपचार में योगदान नहीं देते हैं, लेकिन बड़े चिकित्सा संगठनों और अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया की देखरेख और प्रबंधन से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। वे आमतौर पर अस्पतालों में विभिन्न विभागों में संचार में बेहतर समन्वय और दक्षता सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा दूसरे चिकित्सा विज्ञान के कार्यक्रम हैं जैसे कि B.Pharma यानी कि बैचलर इन फार्मेसी, ये 4 साल का डिग्री कोर्स।
1: श्रोताओं, आइए सुनते हैं।
0: दवाओं के अनुसंधान और विकास पर जोर देता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग इन दिनों तेजी से बढ़ते उद्योगों में से एक है और इनमें कोई भी आकर्षक करियर बना सकता है। B.Pharma स्नातक एक विशेष स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के लिए M.Pharma कर सकते हैं। इसके अलावा 6 साल का Pharm.D पाठ्यक्रम अब पेश किया जाता है और इसे एक पेशेवर पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा कोई मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 4 साल की डिग्री का विकल्प भी चुन सकता है और ये पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग तकनीकों के कार्यान्वयन और अनुप्रयोग के साथ निदान और चिकित्सा के लिए जैविक और चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल उद्देश्यों के लिए उपकरण डिजाइन करने की अवधारणाओं पर आधारित है। पारंपरिक BA, MA, BSc, MSc कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में रुचि रखने वाले उम्मीदवार अपने स्नातक या परास्नातक में मनोविज्ञान को भी प्रमुख विषय के रूप में चुन सकते हैं। योग्यता प्राप्त करके नैदानिक मनोविज्ञान में 2 वर्षीय MPhil एक योग्य नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी बन सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित मांग हर दिन बढ़ रही है, तो MBBS के अलावा बहुत सारे पाठ्यक्रम और करियर विकल्प हैं जिन्हें छात्र चुन सकते हैं। इन दिनों कॉरपोरेट

0: क्षेत्र स्कूलों और संस्थानों में स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यकता है। जीवन शैली प्रबंधन, खेल प्रबंधन, वृद्धावस्था देखभाल और स्कूलों में बच्चे और कल्याण प्रबंधन जैसे विकल्प कुछ उत्कृष्ट करियर विकल्प हैं। स्वास्थ्य देखभाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपचार और दवाओं, अनुसंधान और नई चिकित्सा तकनीक का विकास संबंध स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए सबसे दिलचस्प करियर विकल्प हैं। साथ ही इसमें चुनौतियां भी हैं, इसलिए जो भी उम्मीदवार MBBS नहीं करने के इच्छुक हैं या योग्य नहीं हैं, उनके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं जिन्हें विस्तार से सूचीबद्ध कर उचित मार्गदर्शन और समर्पण के साथ उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, इसके अलावा कई मेडिकल पाठ्यक्रम हैं, जैसे कि संबंध चिकित्सा विज्ञान, पैरा मेडिकल विज्ञान और पसंद जो भी शाखाएं पसंद हैं उनमें कुछ अच्छे विकल्प हैं जिन्हें 12वीं कक्षा में भौतिकी रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषयों के साथ इच्छुक उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसके अलावा BDS, BAMS, BUMS, BHMS, BSMS और BVSC और AH पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है नीट के माध्यम से, और इन पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश लिया जा सकता है। कुछ कॉलेज नीट के स्कोर के माध्यम से प्रवेश ले लेते हैं और कुछ ऐसे पैरामेडिकल पाठ्यक्रम भी हैं जिनमें प्रवेश नीट के माध्यम से नहीं, एडमिशन नहीं होता है, लेकिन इन पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की जानकारी आप लेते रहें और इसमें अपनी योग्यता दर्शाएं, और इन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश मिल जाता है तो आपका मेडिकल का जो करियर है, मेडिकल क्षेत्र में जो रोजगार करने की इच्छा है, उत्कंठा है, आकांक्षा है, इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो श्रोताओं, कई तरह के ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें प्रवेश लेकर आप मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हमने आपसे बातें की MBBS के अलावे मेडिकल के क्षेत्र में करियर के कई अवसर उपलब्ध हैं जिनमें प्रवेश लेकर छात्र अपना रोजगार, अपना करियर बना सकते हैं इस विषय पर। और इसके साथ ही हमें दीजिए कार्यक्रम उड़ान से इजाजत। अगले अंक तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उड़ान, संकलन एवं वाचन मीनाक्षी कर्ण के थे। आज है श्रोताओं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस में हम सभी आज जागरूक होकर और तरह तरह की बातें करते हैं। तो आज क्या सिर्फ आज ही के दिन पर्यावरण दिवस के दिन अगर हम अपने सोच से, अपनी समझ से अगर पर्यावरण को सुरक्षित रखें तो ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। आज तो है, आज उसका विशेष दिन है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ उन पेड़ पौधों के लिए, हरियाली के लिए है, नदियों के लिए है, जंगलों के लिए है। क्योंकि हर एक दिन हम खास बनाते हैं, जैसे हर दिन हमारा होता है लेकिन एक दिन खास होता है, हमारा जन्मदिन, हमारा सालगिरह, वैसे ही आज पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस है और आज के दिन हम सभी ने ये संकल्प लिया कि हम सुरक्षित रखेंगे अपनी प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति हमें सुरक्षित रखती है। प्रकृति बिना मोल के, बिना तोल के, बिना भाव के किसी में अनदेखा नहीं करती, भाव से परिपूर्ण होकर हम सभी को अपने में सींचती है, खींचती है। और वो पशु पक्षी हो चाहे हम हो, सबके लिए उसकी एक ही सोच होती है कि सबको जीवन दान देना है, सुरक्षित रखना है और एक तरह रखना है। उसके लिए कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। जहाँ वो छोटी सी चिड़ियों की चहचहाहट में सुबह की एक ठंडी हवा सांस भरती है, वहीं जब सुबह हम उठते हैं तो ऑक्सीजन के जरिए अपने आप को कितना ताज़ा महसूस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ न एसी, न कूलर, न पंखा वो हमें दे सकता है। एसी में अगर आप बैठते हैं वो ठंडा करता है, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हैं और प्रकृति की हवा जो होती है उससे कई करोड़ गुना ज़्यादा हमें अच्छा एहसास दिलाती है, हमें तरोताज़ा करती है। क्योंकि प्रकृति, हम कृत्रिम में अगर डूबे हैं तो प्रकृति हमसे दूर चली जा रही है। अगर प्रकृति को हम बचाएंगे, सभी मिलकर एक साथ मिलकर प्रकृति की छांव में अगर रहते हैं तो आइए उसकी सांसों में हम बसते हैं। वादा करते हैं प्रकृति को हमेशा खूबसूरत बनाएं, हमेशा प्रकृति के साथ चलें, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करें। पानी को बचाना है, क्योंकि जल ही जीवन है। जल आज है, कल है, तभी हम हैं। और ये आजकल नहीं, वर्षों के लिए जल है तो जीवन है। नई पीढ़ी को भी हम जागरूक करें कि प्रकृति को हमें बचाना है। छोटे छोटे बच्चों को समझाएं प्रकृति को कैसे बचाएंगे, और ये शुरुआत श्रोताओं घर से की जाती है। छोटी छोटी जो आदतें हमारी होती है, नल को खुले रखने की, ज़रूरत से ज़्यादा पानी को बहाने की, पानी का काम है तो हमें करना है पर फिजूल खर्ची से हमें बचना है, ये सोचना चाहिए। पानी, अगर हर तरह के पानी का इस्तेमाल हम हर जगह कर सकते हैं। थोड़े से गंदे पानी अगर हैं, अगर पोछे के पानी है तो नाली में डाल दें, नाली की साफ़ सफाई हो जाएगी। कपड़े अगर धुल के रखें, थोड़े से साफ़ हैं कपड़े के पानी अगर साफ़ हैं तो उसे आप गमले में भी डाल सकते हैं, उससे आप पोछे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, एक एक बूंद के लिए जहाँ कई लोग तरसते हैं वहाँ हम बेवजह के पानी बहा दें, ये कौन सा सही तरीका है? आइए इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की हम सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जल है, जंगल जमीन है तो हम हैं। और अब आइए सुनते हैं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में कुछ ही पलों में रात्रि के 8:10 होने को हैं और हम सुनेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र से केंद्र सरकार के 12 साल 8:10 पर।

0: फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की कड़ी में 8:10 हो रहे हैं। दोस्तों, आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम वर्तमान सरकार के 12 वर्ष पूर्ण।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Bharat Kheda, Secretary, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, on major reforms and initiatives for the growth and empowerment of MSMEs. Interviewer is Arjun J. Chaudhary.
2: Vishesh Shrinkla, Modi Sarkar ke 12 saal ke antargat aaj suniye, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए प्रमुख नीतिगत सुधारों और पहलों पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव भरत खेड़ा के साथ विशेष साक्षात्कार कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी।
3: A warm welcome to our listeners on Akashvani, and today we're joined by Shri Bharat Kheda, who is the secretary at the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, and we will be discussing about the major reforms and initiatives in

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: www.delhi-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
3: The negotiating team which came from
4: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमरीकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects in Gujarat and Daman. Prime Minister emphasizes on self-reliance in energy sector, says India actively leading towards green future by balancing economic growth and ecological preservation. Country's GDP growth rate estimated at 7.7% in 2025-26 following strong momentum by the economy. Home Minister Amit Shah says smart border project in its final execution stage, pilot rollout to be introduced next year at sensitive border locations. Southwest monsoon advances further into more parts of Arabian Sea, Goa and Karnataka. And in hockey, India enter final of men's under 18 Asia Cup, beating Pakistan 5-3 in semi-final at Kaka Migahara in Japan. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat today, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. He said the current global energy crisis highlights the critical importance of self-reliance in energy. He said the world is gradually progressing towards a greener future एंड इंडिया इज एक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस ट्रांजिशन।
7: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
6: Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
7: Surat सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी, साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
6: After reaching Surat this afternoon, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Later in the evening, Mr. Modi launched various projects worth around 2,970 crore rupees in Daman. These projects include major healthcare and aviation infrastructure.
7: आज भी यहाँ कनेक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे जुड़ी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। विकास के ये काम दमन और पूरी यूनियन टेरिटरी के लिए यहाँ के लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे, इनसे युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे।
6: Prime Minister Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis.
7: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
6: India's economy has maintained a strong momentum in 2025-26 with real gross domestic product GDP estimated to grow by 7.7% in comparison to 7.1% in 2024-25. The Ministry of Statistics and Program Implementation today released the provisional estimates of annual GDP for the financial year 2025-26 and quarterly estimates of January to March this year. It said the primary sector has observed 3.2% growth rate, mainly driven by the performance of agriculture and fisheries sectors. Addressing a press conference in New Delhi today, Secretary, Ministry of Statistics and Program Implementation Saurabh Garg said, gross fixed capital formation recorded a robust growth of 8.2% in 2025-26.
8: Gross fixed capital formation, which represents the investment in the economy, that has been remarkable 8.2% in 25-26, increasing from 6.4% in 24-25. And gross fixed capital formation indicates that perhaps future growth should also be robust because it signifies the investment in the economy.
6: Speaking on the occasion, Chief Economic Advisor Dr. V. Anant Nageshwaran said the government has taken several proactive measures to maintain macroeconomic stability amid global uncertainties.
9: We are obviously very pleased with the growth outcome. It only confirms what we believed on February 27, that the Indian economy was actually in a pretty strong Goldilocks situation with good growth, moderating inflation and a fiscal deficit coming down, etc. So these numbers show that there is an underlying strength and resilience to India's macroeconomic trends, and we are heartened to see that the high frequency data have confirmed that this momentum has continued into the new financial year so far.
6: The Reserve Bank of India has kept key interest rates unchanged for the second consecutive monetary policy review in the current financial year Announcing the bi-monthly monetary policy today, RBI Governor Sanjay Malhotra said the Monetary Policy Committee has unanimously decided to retain the repo rate at 5.25% while maintaining a neutral policy stance. The RBI has revised its

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमन में बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज के जरिए भारत सरसब्ज मुस्तकबिल की जानिब फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। मईशत में मजबूत रुझान के नतीजे में साल 2025-26 में मुल्क की GDP की पेशरफ्त 7.7% रखी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। हिसास सरहदी मकाम पर अगले साल पायलट शुरुआत मुतारिफ की जाएगी। जुनूब मगरबी मानसून बुहरा अरब, गोवा और कर्नाटक के मजीद हिस्सों में पेशरफ्त कर रहा है। और हॉकी में भारत जापान के काका मिगारा के मकाम पर सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 5-3 से शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह कहते हुए तवानाई के शोबे में खुद की फालत पर जोर दिया है कि दुनिया एक माहौलियात के लिए साजगार मुस्तकबिल की जानिब पेशरफ्त कर रही है और भारत इक्तसादी पेशरफ्त को मुतवाजिन करके नीज माहौलियाती तहफ्फुज़ के जरिए इसकी फाल तौर पर क़यादत कर रहा है। गुजरात के शहर सूरत में आज 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा लागत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि भारत की 250 गीगावाट की मजमूई काबिल कदर तवानाई में से अकेला गुजरात 50 मेगावाट फराहम करता है, जो कि मुल्क की सब्ज तवानाई का 5वां हिस्सा होता है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रियासत शमसी तवानाई से माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया में तब्दीली में एक वसी रोल अदा करना चाहती है, जो तवानाई में खुद की फालत हासिल करने के लिए लाजमी है। इस मौके पर अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि ये इकदामात पेशरफ्त की क़यादत करेंगे और अवाम के लिए ज़िंदगी की आसानी को बेहतर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने खुशी जाहिर की कि माहौलियात के दिन के मौके पर वो सूरत में हैं, जो कि मुल्क के साफ तरीन शहरों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मौजूदा तवानाई का आलमी बहरान तवानाई में खुद की फालत की कलीदी अहमियत को उजागर करता है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: भारत की मईशत ने साल 2025-26 के दौरान तेजी का रुझान बरकरार रखा है। साल 2024-25 की 7.1% असल GDP के मुकाबले साल 2025-26 के दौरान असल GDP की तरक्की का तखमीना 7.7% है। शुमारियात और प्रोग्राम के निफाज़ की वजारत ने आज माली साल 2025-26 के सालाना अंदाजे के आर्जी आदादोशुमार और इस साल जनवरी से मार्च की सहमाही के अंदाजे जारी किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये भारतीय मईशत के लगातार इस्तेहकाम, इस्लाहात की कामयाबी और 140 करोड़ भारतीयों की सख्त मेहनत की अक्कासी करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत जिंदगी गुजारने और कारोबार करने में आसानी पैदा करने और नौजवानों के लिए मौके में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि स्मार्ट सरहदी प्रोजेक्ट अमलावरी के अपने हतमी मरहले में है। इसमें सरहदों के साथ 7 से 8 हिसास मकामात पर अगले साल पायलट शुरुआत करने की मंसूबाबंदी शामिल है। इन मकामात की हिफाजत BSF और SSB करती हैं। त्रिपुरा में आज लंकामूरा सरहदी चौकी पर प्रहरी सम्मेलन से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, नौजवानों और मुकामी शहरी इंतजामिया को नाकाबिले दरअंदाजी सरहदी बंदोबस्त का एक निज़ाम वजह करने के जिमन में मरबूत करेगा।
2: हमने तय किया है कि BSF जहां जहां है, SSB जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
0: जनाब शाह ने जोर दिया कि हुकूमत त्रिपुरा, मगरबी बंगाल और बिहार के हिस्सा सरहदी हिस्सों में दरानदाजी या सरहदी रखना के बगैर किसी भी तरह की आबादियाती मुंतकली की इजाजत नहीं देगी। वजीर दाखिला ने मनुष्यात की स्मगलिंग, इंसानों की नाजायज तिजारत और मवेशियों की स्मगलिंग जैसे खतरात को जड़ से खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जनाब शाह ने बड़े पैमाने पर शजरकारी की एक मुहिम में भी शिरकत की और अगार का एक पौधा लगाया। नेपाल के खारजी उमूर के वजीर शिशिर खनाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत के 3 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। तीसरे पहर आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि डॉक्टर जयशंकर कल नेपाल के अपने हम मनसब के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने उजागर किया कि भारत का नेपाल के साथ एक जामे एजेंडा है जिसमें तरक्याती ताउन से लेकर तिजारत और सरमायाकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल के साथ कसीर जहती शराकतदारी को मुस्तहकम करना चाहता है। वजारत खारजा ने आज इत्तला दी है कि दिल्ली के मालविया नगर इलाके में हाल ही में पेश आए आग लगने के हादसे में जान गंवाने वालों में गैर मुल्की शहरियों की तादाद 13 है। नई दिल्ली में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि महलुकीन में 4 अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया से और 3 का ताल्लुक किर्गिस्तान से था, जबकि मोजम्बिक, लाइबेरिया, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश, जमहूरिया कांगो और इराक के 1-1 शहरी की मौत हुई है। भारत रूस ताल्लुकात पर बोलते हुए तर्जुमान ने कहा कि भारत और रूस के दिफाई ताल्लुकात मजबूत हैं जो बरसों से चले आ रहे हैं। भारत और अमरीका के दरमियान तिजारती समझौते पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि अमरीका के आला मुजाकिरातकार अपनी टीम के साथ 1 जून से 4 जून तक भारत में थे। उन्होंने कहा कि बातचीत मुस्बत और तामीरी नौयत की रही। एक दीगर सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि इस साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमरीका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कवानीन मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के 5वीं नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज़ रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इक्तसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निज़ाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिसाइल निज़ाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निज़ाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ेह मौकफ को दोहराया है कि नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिल तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिल वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाजह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदाम उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वजीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वजीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में डीएम्स को अपने जिले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो जरूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे। गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसीह की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आईन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरक़ी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि ये दरियाफ्त बुहरे अंडमान के तवानाई के वसी इम्कानात को वाजह करती है और इस तास में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड्स 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

श्रोताओ, आज के फनकार में जहां हम बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा को अपनी पहचान दी, एक नई चमक दी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने फैशन और एक्टिंग दोनों को ही नया आयाम दिया।

कपूर, जिनका पूरा नाम है सोनम कपूर आहूजा, 9 जून 1985 को मुंबई में जन्मी बॉलीवुड के झकास हीरो अनिल कपूर की बेटी

0: My name is Lakhan, my name is Lakhan, sajno ka sajan, mera naam hai Lakhan.
1: तो चलिए सोनम कपूर की इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करते हैं. उनकी डेब्यू फिल्म थी सांवरिया, जो आई साल 2007 में. संजय लीला भंसाली की इस फिल्म में उनके साथ थे रणवीर कपूर. फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल न किया हो, लेकिन सोनम की मासूमियत ने सबके दिलों में अपना घर कर लिया.

इसके बाद सोनम ने दिल्ली सिक्स में काम किया, जहां मसक कली गाने ने तो जैसे हर गली मोहल्ले में धूम मचा दी थी। और इसी के साथ सोनम ने दिखा दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर की दुनिया में ही नहीं, बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री का हुनर भी रखती हैं।

अब बात करते हैं साल 2010 की, जब आई उनकी एक बेहद स्टाइलिश फिल्म आयशा। इस फिल्म को सोनम ने खुद प्रोड्यूस किया और इस फिल्म ने उन्हें फैशन आइकन बना दिया।

बाद उन्होंने रोमांटिक और अभिनय शैली के तमाम अलग अलग फन को बारीकी से पर्दे पर उतारा। ये फिल्में थीं आई हेट लव स्टोरीज, थैंक यू और मौसम।

वैसे अगर हम देखें तो सोनम कपूर की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है रांझना। रांझना की जोया ने हमें रुलाया, हंसाया और दिखाया कि सोनम कपूर एक सीरियस कलाकार भी हैं। धनुष के साथ उनकी केमिस्ट्री ने फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया। प्यार मोहब्बत और रोमांटिक कल्ट फिल्म में इस फिल्म का अपना एक अलग स्थान है।

इसके बाद आई खूबसूरत, एक हल्की फुल्की दिल को छू जाने वाली फिल्म। इस फिल्म में सोनम का क्यूट और चुलबुला अंदाज सभी को भा गया।

फिर आई राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो। यहाँ सलमान खान के साथ सोनम ने स्क्रीन शेयर की। भव्यता, संगीत और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर इस फिल्म में सोनम की सादगी ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।

भाग मिल्खा भाग में सोनम कपूर ने बीरो का किरदार निभाया, मिल्खा सिंह की पहली प्रेमिका जो उसकी युवा उम्र की मासूमियत और भावनात्मक संघर्षों का अहम हिस्सा बनती हैं। ये भूमिका भले ही स्क्रीन पर सीमित समय के लिए थी, लेकिन इसके महत्व को बिल्कुल भी कम आका नहीं जा सकता। सोनम ने इस फिल्म में अभिनय के लिए सिर्फ 11 रुपए की प्रतीकात्मक राशि ली, न कोई फीस, न कोई स्टारडम की मांग। उनका ये फैसला इस बात का प्रमाण है कि सोनम केवल एक कमर्शियल एक्टर नहीं बल्कि एक संवेदनशील और जुनूनी कलाकार भी हैं, जो सिनेमा को उसके शुद्ध रूप में समझती और निभाती हैं। बीरो

किरदार में सोनम ने पंजाब की परंपराओं, संस्कृति और भावनाओं को बेहद सादगी और सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा। उनका अभिनय न केवल कहानी में गहराई जोड़ता है बल्कि दर्शकों को ये महसूस भी कराता है कि अभिनय सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि समर्पण और संवेदना का भी नाम है। इस भूमिका के जरिए सोनम कपूर ने ये साबित किया कि जब कहानी दिल को छू जाए तो कलाकार अपनी सीमाओं से परे जाकर सिर्फ कला के लिए काम करता है बिना किसी भव्यता की अपेक्षा के।

फिर आई फिल्म संजू, जहां रणबीर कपूर के साथ उन्होंने निभाया रूबी का खूबसूरत किरदार। ये रोल भी छोटा था लेकिन फिल्म की इमोशनल गहराई को बढ़ाता है।

बाद फिल्म नीरजा आई। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारत की वीर बेटी नीरजा भनोट को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। सोनम ने इस किरदार को जिस संवेदना, साहस और सादगी के साथ निभाया, उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया। उन्होंने नीरजा की निडरता, मानवीय संवेदनाएं और बलिदान को इस तरह पर्दे पर उतारा कि वो किरदार अभिनय से कहीं आगे जाकर एक जीवंत अनुभव बन गया। इस फिल्म में सोनम ने पूरी तरह से साबित कर दिया कि वो सिर्फ ग्लैमर तक सीमित नहीं है बल्कि एक गंभीर और समर्पित कलाकार भी हैं, जो सच्ची कहानियों को आत्मा से जी सकती हैं। नीरजा के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, स्पेशल मेंशन सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और प्रशंसा मिली, जो इस बात का प्रमाण है कि सिनेमा में उनका स्थान सिर्फ एक स्टार के रूप में नहीं बल्कि एक सशक्त कलाकार के रूप में भी है।

नीरजा जैसी संवेदनशील फिल्म के बाद सोनम कपूर ने वीरे दी वेडिंग जैसी मॉडर्न बोल्ड और फ्रेश कहानी के जरिए अपनी अभिनय रेंज का एक अलग ही रूप दर्शाया। इस फिल्म में उन्होंने एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर महिला का किरदार निभाया जो आज की पीढ़ी की सोच और संघर्षों को ईमानदारी से सामने लाती है।

बाद 2018 में वो दिल्ली के उद्यमी आनंद आहूजा की शरीक हयात बनी, जो उनकी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी शादी भी उतनी ही सरल, खूबसूरत और रियल थी जितना उनका व्यक्तित्व। आज सोनम कपूर एक एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल आइकन भी हैं। वो अक्सर महिलाओं के हक, फैशन और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार रखती हैं। वो अब एक बेटी की माँ भी बनी हैं, जिसका नाम है वायु, और इस नए फेज में भी वो उतनी ही ग्रेसफुल लगती हैं, उतनी ही खूबसूरत लगती हैं।

कपूर एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेती हैं। महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़े टैबू हों, LGBTQ+ समुदाय की स्वीकार्यता या मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषय, सोनम हर बार खुलकर अपनी बात रखती हैं। उन्होंने पैडमैन और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ये फिल्मों में ऐसे मुद्दों को उठाया जिन पर बॉलीवुड अक्सर चुप्पी साध लेता है।

इसके अलावा सोनम जानवरों के अधिकारों की भी मुखर समर्थक हैं। वे पेटा की सदस्य रहीं और कई बार उन्होंने फर और चमड़े के उपयोग के खिलाफ अभियान भी चलाया। सोनम को पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर जैसे खिताब से भी नवाजा जा चुका है। उनके लिए सच्ची सुंदरता सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि संवेदनशीलता और करुणा में भी है। सोनम कपूर को उनके अभिनय और सामाजिक योगदान के लिए कई बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। फिल्म निर्जा में उनके दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मेंशन मिला। साथ ही फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड आईफा और जी सिने अवार्ड्स में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब उन्होंने हासिल किया। उन्हें रांझणा, सावरिया और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों के लिए भी फिल्म फेयर में नामांकन मिला। फैशन और स्टाइल के क्षेत्र की जहां तक बात है उसमें भी वे लगातार मोस्ट स्टाइलिश वुमेन और फैशन आइकन ऑफ द ईयर जैसे अवार्ड्स जीतती रही हैं।

कपूर के फिल्मी सफर की दास्तान। एक स्टाइलिश, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और संवेदनशील एक्ट्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि सोनम आगे भी हमें ऐसे ही दिलचस्प किरदारों में दिखती रहेंगी।

0: था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री सोनम कपूर पर। स्वर संगीता श्रीवास्तव का, शोध आलेख और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए रजनीगंधा की इस खूबसूरत से फिल्म गायक के निर्देशक जिसे गाए किशोर कुमार ने, एस डी वर्मन की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। अभी से लेकर रात्रि 11 बजे तक बने हैं आपके साथ इस खूबसूरत से प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है रजनीगंधा। 10:05 और 50 सेकेंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में।

रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। अभी आपने सुना फिल्म गजल के इस खूबसूरत से नगमे को मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मदन मोहन के संगीत साहिर लुधियानवी के बोल। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आपके साथ का ये खूबसूरत नगमा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत और आनंद।

आपके साथ। इस फिल्म के गाने को आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत। आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

0: गाइड फिल्म के गाने को आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज़ में, स्टीव बर्मन के संगे शैलेंद्र के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं आनंद बख्शे के बोल, लक्ष्मीकांत प्यालाल के संगीत, फिल्म का नाम आए दिन बहार के, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने।
1: मेरे दिल से

दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोता हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:35 और 58 सेकंड हो चुके हैं। ये सफर 11 बजे तक चलने वाला है, तो हमारे साथ बने रहें फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं फिल्म कातिलों के कातिल का ये खूबसूरत सा नगमा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है कल्याण जी आनंद जी के संगीत।

मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म कातिलों के कातिल के सितारे का मजरूह सुल्तानपुरी के बोल कल्याण जी आनंद जी के संगीत। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। सुनते हैं अभिजीत भट्टाचार्य अलका याग्निक की आवाज में फिल्म जुदाई का ये खूबसूरत नगमा, समीर के बोल, नदीम श्रवण के संगीत।

कहना प्यार है। कुमार सानू की आवाज़ में आपने इस फिल्म के गाने को सुना। समीर कपूर राजेश रोशन के संगीत थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:54 और 50 सेकंड हो चुके हैं। हम कुछ ही पलों में यानी 11:11 बजे सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। आइए इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म कृष के गाने को सुनते हैं। आलिशा चिनाया जुबिन गर्ग की आवाज़ में, राजेश रोशन के संगीत हैं, समीर के बोल। गाने के साथ आज के कार्यक्रम रजनीगंधा से हमें दे इजाजत। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार।

0: मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैसों का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे।

नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।